ताकि यह ज्ञात हो सके कि मृदा के लिए किसी सुधारक जैसे चूना या जिप्सम देने की आवश्यकता है या नहीं। नमूने के लिए मृदा एकत्रित करते समय कुछ खास बातें ध्यान में अवश्य रखें। कभी भी सिंचाई की नाली के समीप से नमूने के लिए मृदा नहीं लें। इसी प्रकार ऐसे स्थान से जहां सतह की मृदा बह गई हो, मेड़ ऊपर से, पेड़ के नीचे से, कुएं व खाद के ढेर के समीप से भी नमूने हेतु मृदा नहीं लेनी चाहिए। यदि ऐसे स्थानों से मृदा लेकर नमूना तैयार किया गया हो तो उसके परीक्षण परिणाम उस क्षेत्र या खेत के अनुसार नहीं होंगे और मृदा परीक्षण का पूरा उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। मृदा का नमूना अलग अलग गहराई से लिया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल उगाई जाएगी। वार्षिक फसलों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन व रेशों की फसलें इत्यादि के लिए ऊपरी 15 सेंटीमीटर की गहराई से मृदा के नमूने लिए जा सकते हैं। जहां फलदार पेड़ अर्थात बगीचा लगाया जाना हो, वहां पर 1 मीटर तक की गहराई से नमूने हेतु मृदा लेनी चाहिए, जिससे मृदा के भीतरी हिस्से में यदि कोई समस्या हो तो उसका पता चल सके। परंतु अलग अलग परतों की मृदा का अलग अलग नमूना लेना चाहिए। मृदा के नमूने लेने के बाद ही यह पता चलता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व एवं इनका पादप जीवन में क्या योगदान है। जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा, बोरान, क्लोरीन, कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम, सिलिकॉन ऐसे तत्व हैं जिनकी पौधों के लिए बेहद आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को जानना किसान भाइयों के लिए बेहद आवश्यक है। किसान भाई यदि मृदा परीक्षण कराएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें इन पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी और पोषक तत्वों की कमी को पूरी की जा सकती है, ताकि किसान भाई जो भी फसल लगाते हैं उससे उनको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव का विषय मृदा परीक्षण से लाभ। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7 बजे कार्यक्रम गूंजे जंगल में आज आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी, सादरी और सरगुजिया लोकगीत। सुबह 7:30 पर आप सुन सकेंगे जनसंपर्क से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम साहित्य पत्रिका में आज आप सुनेंगे कविता पाठ सुबह 8:30 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9 बजे। तापमान सूचना, कार्यक्रम विवरण और फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। प्रस्तुत करता होंगे प्रमेंद्र कुमार, प्रस्तुति सहायक कृष्णानंद तिवारी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में बातचीत का विषय होगा परिवार, मजबूत रिश्तों का आधार और आत्मनिर्भरता महिलाएं होती जरूरी। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गुलदस्ता क्रम में कहानी पाठ राजलक्ष्मी पांडे का। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर आज आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा मजबूत परिवार व्यवस्था से सामाजिक समरसता अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। साथ ही चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन से स्वस्थ महिला। कार्यक्रम किसानवाड़ी का प्रसारण समय होगा शाम 7:30। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बातचीत का विषय कद्दू वर्गीय सब्जी की देखभाल कैसे करें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर PK भगत उद्यानिकी। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। साथियों ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं रामलोचन यादव और साथियों के स्वरों में भोजपुरी कहरवा गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एतवार दास और साथियों के स्वरों में भिनसरहा कर्मा गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नदीम परमार के इस कलाम से। इसे गाया है जगजीत सिंह ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आजाद जालंधरी की गजल मिताली सिंह की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं गोपेश। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या चलते फिरते गाड़ियों में भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसा

भरोसेमंद माध्यम है। हमर हाथी हमर गोट, सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार सरगुजा, पहली खबर लेते हैं एमसीबी जिले से। कलेक्टर ने नगर विकास की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पेयजल, यातायात और हसिया नदी फ्रंट विकास पर दिए अहम निर्देश। आज कलेक्टर ने नगर क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का व्यापक निरीक्षण कर विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं एवं जन सुविधाओं की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पेयजल व्यवस्था, यातायात सुधार, शहरी अधोसंरचना एवं भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आइए सुनते हैं फिल्म अनपढ़ का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

नमस्कार सरगुजा। अगली खबर अंबिकापुर से। 15 मई से शुरू होगा 21 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर। जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर इस वर्ष 15 मई 2026 से प्रारंभ होगा। 21 दिवसीय इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन 15 मई को शाम 4:30 पर गांधी स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में किया जाएगा। खेल शिविर के सफल संचालन को लेकर कलेक्टर के मार्गदर्शन में 12 मई को एलेक्स भवन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्थाओं एवं संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कुछ और भी खबरें हैं, उससे पहले आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म राजकुमार का गीत।

0: अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म राजकुमार से ये गीत सुना।
1: जब आकाशवाणी अंबिकापुर पर बजती है फोन की रिंग रिंग की मधुर धुन, तब गूंजती है आपकी मधुर बातें, कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
2: नमस्ते, मैं नीतू में बोलती हूँ राजधानी रायपुर से। आप कैसे हैं बताएं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: मुझे भी अंबिकापुर से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है।
1: ऐसी ही बातों के साथ हमें कॉल कीजिए हर रविवार को सुबह 10:30 से 11 के बीच इन फोन नंबरों पर 2319917। एक और नंबर है 2319918। अंबिकापुर से बाहर के श्रोताओं के लिए STD कोड है 07774। इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है मंगलवार को सुबह 10:00। आप सब से एक प्यारा सा अनुरोध, जिनके कॉल शामिल हो जाते हैं वे कृपया 2 सप्ताह के बाद ही हमें कॉल करें कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
0: मीडिया वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म चिराग का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

नमस्कार सरगुजा। अगली खबर कोरिया जिले से। नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा में सुशासन तिहार जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। शिविर में विभिन्न मांग और समस्याओं से जुड़े 199 आवेदन प्राप्त। शिविर में अधिकारियों ने दी विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं यह आखिरी गीत फिल्म मधुमति से लता की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। इन्हीं गीतों और इन्हीं समाचारों के साथ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।
5: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
6: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
7: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
8: The UAE is an important partner.
9: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय

0: कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: एमएमटीपीए एलएनजी टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए

0: अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं।

0: आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shehrzad Pongkatkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwari News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य पत्रिका। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कविता पाठ।

इतना कुछ था दुनिया में, फिर भी हम कितना कम समझ पाए। कुंवर नारायण की इन्हीं गहन और अर्थपूर्ण पंक्तियों के साथ नमस्कार। आकाशवाणी अंबिकापुर के इस साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यिकी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी अक्षय रंजन वर्मा। श्रोताओं, साहित्य जीवन के अनुभवों, भावनाओं और विचारों को सरल और सुंदर रूप में सामने लाता है। यह हमें अपने समय, समाज और अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। साहित्यिकी के इस अंक में हम ऐसे ही कुछ स्वर लेकर उपस्थित हैं जो मन को छूने के साथ साथ सोचने का अवसर भी देते हैं। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रमेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत संपादकीय, जिसमें समकालीन विषयों पर सहज और स्पष्ट विचार रखे गए हैं। इसके बाद प्रस्तुत होगा श्री जय गुप्त द्वारा कविता पाठ, जिसमें भावनाओं की कोमल अभिव्यक्ति होगी। और अंत में श्री सुरेंद्र कश्यप से सुनेंगे एक कहानी जो जीवन के किसी पहलू को करीब से देखने का अवसर देगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं संपादकीय की ओर। आज का संपादकीय प्रस्तुत कर रहे हैं प्रमेंद्र कुमार।

श्रोताओं नमस्कार। साहित्य किसी समाज की आत्मा होता है और हिंदी साहित्य तो सदियों से इस देश की धड़कन रहा है। तुलसी की रामचरितमानस से लेकर प्रेमचंद की गोदान तक हमारे साहित्य ने हर युग में समाज को आईना दिखाया है। लेकिन आज का सवाल यह है, 21वीं सदी के दूसरे दशक में खड़े होकर जब हम समकालीन हिंदी साहित्य को देखते हैं तो वह हमें क्या कह रहा है। समकालीन हिंदी साहित्य आज अनेक धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। एक तरफ दलित विमर्श की सशक्त आवाजें हैं तो दूसरी तरफ स्त्री विमर्श का विस्तार हो रहा है।

0: महिला लेखिकाएं अपनी शर्तों पर अपनी भाषा में लिख रही हैं। लेकिन जो बात समकालीन हिंदी साहित्य को सबसे अधिक विशिष्ट बनाती है वह है विविधता का उत्सव। आज आदिवासी जीवन पर लिखी जा रही कहानियां हैं, ग्रामीण संघर्ष पर कविताएं हैं, शहरी अकेलापन पर उपन्यास हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के वनों और नदियों की गंध, यहाँ के आम इंसान का दर्द, ये सब अब हिंदी साहित्य के केंद्र में आ रहे हैं। श्रोताओं, एक चिंता का विषय भी है। डिजिटल युग में जब सब कुछ तेज और तात्कालिक हो गया है, तब साहित्य पढ़ने का धैर्य कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी कविताएं वायरल होती हैं, लेकिन गंभीर उपन्यास और विचारशील कहानियां पाठकों की प्रतीक्षा में हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज के साहित्यकार और साहित्य प्रेमी दोनों को मिलकर करना होगा। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। आज हिंदी साहित्य का दायरा बढ़ा है। प्रवासी भारतीय लेखक विदेशों में बैठकर हिंदी में लिख रहे हैं। युवा पीढ़ी के कवि और कथाकार नए प्रयोग कर रहे हैं। पुस्तक मेलों में भीड़ है, साहित्यिक मंचों पर संवाद है और आकाशवाणी जैसे माध्यम हैं जो इस संवाद को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहे हैं। श्रोताओं, हिंदी साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं जीता है, वह जीता है जब हम उसे पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं, उस पर बातें करते हैं। अपने घर में एक किताब जरूर रखिए, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि जो समाज अपना साहित्य भूल जाता है वह अपनी आत्मा भूल जाता है। समकालीन हिंदी साहित्य जीवित है, सक्रिय है और बोल रहा है, बस जरूरत है उसे सुनने की।
1: अभी आपने सुना प्रमेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत संपादकीय अब समय है भावनाओं की अभिव्यक्ति का, प्रस्तुत है श्री जय गुप्त द्वारा कविता पाठ।
2: मैं जय गुप्त कविता पाठ में कर रहा हूँ, जिसमें पहली कविता है मैं जलिया वाला बाग हूँ। मैं जलिया वाला बाग हूँ, भारत का महातीर्थ हूँ, भारत का महातीर्थ हूँ, इतिहास का वो भाग हूँ, चीत्कार हूँ उन गोलियों का, मैं जलिया वाला बाग हूँ। मैं जलिया वाला बाग हूँ, गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की तड़तड़ाहट और चीत्कार करते बेबस वे लोग, गोलियों की तड़तड़ाहट और चित्कार करते बेबस वे लोग, बचने बचाने का सिला क्या, उस कूप का काल ग्रास हूँ, मैं जलियाँ वाला बाग हूँ। इतिहास के काले पन्नों का, इतिहास के काले पन्नों का जिक्र होगा जब भी अगर, इतिहास के काले पन्नों का जिक्र होगा जब भी अगर, ना भूलने की बात है ये, ना भुला सके वो दाग हूँ, मैं जलियाँ वाला बाग हूँ। डायर की बुजदिली का, डायर की बुजदिली का परिणाम था वह कत्लेआम, डायर की बुजदिली का परिणाम था वह कत्लेआम, निहत्थे निरीह बेबसों की मौत का अंजाम हूँ, मैं जलियाँ वाला बाग हूँ। स्मृतियों को विस्मृत कभी, स्मृतियों को विस्मृत कभी ना कर सकेगी कोई कथा, स्मृतियों को विस्मृत कभी ना कर सकेगी कोई कथा, जल रहा हूँ अब तलक न बुझ सका वो आग हूँ, मैं जलियाँ वाला बाग हूँ। अंतिम बंद है, मेरी मिट्टी के उस लाल ने, मेरी मिट्टी के उस लाल ने मुझको दिलाया गर्व है, मेरी मिट्टी के उस लाल ने मुझको दिलाया गर्व है, मेरे नाम पर वह हुआ अमर, मेरे नाम पर वह हुआ अमर, उस उधम का मैं अनुराग हूँ, मैं जलियाँ वाला बाग हूँ, मैं जलियाँ वाला बाग हूँ। दूसरी कविता है माँ की ममता। माँ की ममता है अनंत, माँ की ममता है अनंत, माँ है धरा पर दिग्दिगंत, माँ की ममता है अनंत, माँ है धरा पर दिग्दिगंत, हर आदमी की पहचान माँ से, हर आदमी की पहचान माँ से, वह कौन जो अनजान माँ से, दे जन्म सुत को पालती माँ, दे जन्म सुत को पालती माँ और उस पर खुद को वारती माँ, दे जन्म सुत को पालती माँ और उस पर खुद को वारती माँ, दिन रात गिन गिन वह बिताती, दिन रात गिन गिन वह बिताती, सांचे में सुत को

बिठा लेती माँ, माँ की ममता है अनंत, माँ है धरा पर दिग दिगंत। हम नित बढ़े जूं जूं इस जग में, हम नित बढ़े जूं जूं इस जग में, आशीष माँ का जीवन समर में, भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान को हमने देखा नहीं, उसे देखते पर माँ के हृदय में, उसे देखते पर माँ के हृदय में। माँ को दें चाहे कितनी दुआएं, माँ को दें चाहे कितनी दुआएं, पर भूल से ना दिल दुखाएं, क्षण क्षण यह मेरा माँ को समर्पित, जीवन यह मेरा माँ को समर्पित, माँ की ममता है अनंत, माँ है धरा पर दिग दिगंत। मेरी तीसरी रचना श्रृंगार रस पे आधारित है, रात ढलती रही रात भर। एक गीत है कि रात ढलती रही रात भर, रात ढलती रही रात भर, और तारे बरसते रहे, रात ढलती रही रात भर। जाने कब हो गई वो सुबह, जाने कब हो गई वो सुबह, हम तो बातें ही करते रहे, रात ढलती रही रात भर। पहला बंद। वो काली काली सी जुल्फें घनेरी,

0: उन आँखों की गहराई में ही डूब करके मिटा फासला था, खुशबू ऐसी थी बिखरी फिजा में कि खुशबू ऐसी थी बिखरी फिजा में, हम तो उसमें ही खोए रहे, रात ढलती रही रात भर। अगला बंद, रात पूनम का था चांदनी थी, रात पूनम का था चांदनी थी, शय में घुलती रही रागनी थी, रात पूनम का था चांदनी थी, कि ओस झर झर के गिरते जमी पर, ओस झर झर के गिरते जमी पर, पल पल ढलती रही यामिनी थी, कि ऐसा मदहोश करता वो मौसम, ऐसा मदहोश करता वो मौसम, हम तो उसमें ही घुलते रहे, रात ढलती रही रात भर, और तारे बरसते रहे, कौन साकी बना कौन प्याला बना, कौन साकी बना कौन प्याला बना, हमको इसकी खबर ही नहीं, साकी प्यासी रही रात भर, साकी प्यासी रही रात भर, जाम बन के हम ढलते रहे, रात बीती थी जाने वो कैसे, रात बीती थी जाने वो कैसे, सुबह तक हम संभलते रहे, रात ढलती रही रात भर, और तारे बरसते रहे, जाने कब हो गई वो सुबह, हम तो बातें ही करते रहे, रात ढलती रही रात भर।
1: मेरी तीसरी रचना युवा की परिभाषा। युवा कौन है? हर युवा है युवा की परिभाषा, हर युवा है युवा की परिभाषा।

आशा व प्रेम प्रगति मन की आशा, हर युवा युवा की परिभाषा। जब युवा के मन में राम बसें जीवन के काम तमाम बने, जब युवा के मन में राम बसें जीवन के काम तमाम बने, जब मन में गोविंद श्याम रहें हर मुश्किल राह आसान रहे, शिव भोले हर हर महादेव सदमार्ग दिखाते आदि देव। युवा दुर्गा है रणचंडी है, युवा दुर्गा है रणचंडी है, हिम्मत नहीं तो शिखंडी है, आदर्श हमारे भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव भी हैं। यादों में अब भी सुभाष खड़े, यादों में अब भी सुभाष खड़े, कहीं वीर शहीद आज़ाद खड़े, यादों में अब भी सुभाष खड़े, कहीं वीर शहीद आज़ाद खड़े, कहीं सांगा वीर कहीं राणा है, कहीं सांगा वीर कहीं राणा है, कहीं वीर शिवा महाराणा है। लक्ष्मी झांसी की रानी तो वीरों की अमर कहानी है, लक्ष्मी झांसी की रानी तो वीरों की अमर कहानी है, देश की आन पर मरने वालों की हर मुख पर नाम जुबानी है। अब युवा के मन की यही अभिलाषा, हर युवा युवा की परिभाषा। अगला मंत्र, युवा चाहे तो नवजीवन गढ़, युवा चाहे तो नवजीवन गढ़, पथ कठिन भी हो तो आगे बढ़, हर सांझ का नया सवेरा वह। युवा चाहे तो नवजीवन गढ़, पर पथ कठिन भी हो तो आगे बढ़, हर सांझ का नया सवेरा वह, हर रात का है उजियारा वह, जाड़े की मीठी धूप है वह, जाड़े की मीठी धूप है वह, सावन के जैसा रूप है वह, वह शीतल है और उष्ण भी है, वह शीतल है और उष्ण भी है, वह चंचल मन का कृष्ण भी है। आगे बढ़ता नौ फूल खिले, आगे बढ़ता नौ फूल खिले, वह गाता तो दिल खूब मिले, मुस्कान से उसकी हरित धरा, मुस्कान से उसकी हरित धरा, आंसू निकले तो जगत बहे, युवा उम्मीद ज्योति और है आशा, युवा उम्मीद ज्योति और है आशा, हर युवा युवा की परिभाषा। अगला बंद है, क्रोध में दावा नलसा हुआ है, क्रोध में दावा नलसा हुआ, विक्षोभ में जले अनल सा हुआ, जब शांत हो शीतल जल सा हुआ, बहे अविरल नीर कलकल सा हुआ, भारत का उन्नत भाल युवा, भटका तो बना अंगुली माल युवा, भटका तो बना अंगुली माल युवा, जब बोध मिले तो बुद्ध बने, जब बोध मिले तो बुद्ध बने, मिले ज्ञान तो काली शुद्ध बने, जब बोध मिले तो बुद्ध बने, मिले ज्ञान तो काली शुद्ध बने, मीरा तुलसी सा गीत युवा, मीरा तुलसी सा गीत युवा, राधा मोहन सा प्रीत युवा, हर युवा विवेकानंद सा हो, हर युवा विवेकानंद सा हो, क्षण क्षण गौरव आनंद सा हो, हर प्रथम किरण सी वह आशा, हर प्रथम किरण सी वह आशा, हर युवा युवा की परिभाषा। कभी शीतल श्याम सलोना सा, कभी शीतल श्याम सलोना सा, घर में सपनों का कोना सा, कभी शीतल श्याम सलोना सा, घर में सपनों का कोना सा, वह दिव्य विवेक सी ज्योति है, वह दिव्य विवेक सी ज्योति है, नरमे नरेंद्र सा मोती है, है उत्साह युवा और है उमंग, है उत्साह युवा और है उमंग, जीवन में भरता है वह रंग, उस चित्रकार की रचना हुआ, जिसमें नित भरता सपना हुआ, नित आगे बढ़ने की अभिलाषा, हर युवा युवा की परिभाषा। अंतिम है, पथ भटके तो वह अजमल है, पथ भटके तो वह अजमल है, पथ दिखलाए तो गीता है, पथ भटके तो वह अजमल है, पथ दिखलाए तो गीता है, वह गंगा यमुना सी कलकल है, वह पावन परम पुनीता है, मेरे देश को ऐसा भाग्य मिला, हम सबको यह सौभाग्य मिला, प्रगति प्रगति और वस विकास, मेरे देश को ऐसा भाग्य मिला, हम सबको यह सौभाग्य मिला, प्रगति प्रगति और बस विकास, जल थल नभ में बस दिखे आस, जिसे देख जलें दुनिया वाले, जिस देख चलें दुनिया वाले, आतंक की राह पर चलने वाले, नव यौवन का नवकाल है यह, नव यौवन का नवकाल है यह, और दौर है अमृतकाल का यह, नव यौवन का नवकाल है यह, और दौर है अमृतकाल का यह, मिल साथ चलो विकास करें, मिल साथ चलो विकास करें, हम देश का अपने भाग्य गढ़ें, हर जन की हो यही अभिलाषा,
हर युवा युवा की परिभाषा, वह प्रेम प्रगति मन की आशा, हर युवा

0: युवा की परिभाषा।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ श्री जय गुप्त द्वारा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्रस्तुत है कहानी पाठ श्री सुरेंद्र कश्यप द्वारा।

संलिप्त थे। स्कूल कॉलेज इनके लिए विद्या का घर नहीं अपितु टाइम पास के लिए एक अच्छे ऐशगाह के समान था। जब एक ग्रुप में निकलते तब इनकी चाल और क्रियाकलाप देखने लायक होती। इनमें अधिकतर बड़े घर के बच्चे थे जिनके पास पॉकेट मनी के नाम पर खासी रकम होती। बहुधा धन के साथ बुराइयों का आगमन स्वाभाविक होता है, जिससे इस समूह के बच्चे किसी तरह अछूते नहीं थे और कुछ मजबूरी वश शामिल थे इस समूह में। मन में छिपा आक्रोश लिए नीरज, चमन और उदय इस ग्रुप से अलग तीन अच्छे मित्रों में गिने जाते थे। तीनों की मित्रता देखकर लगता था कि ये तीनों मित्र नहीं अपितु भाई हैं। आज तीनों कॉलेज की अंतिम परीक्षा का प्रमाण पत्र हाथ में लिए कॉलेज से निकल रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगाया। आज वे तीनों एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां हर एक को अपनी अपनी मंजिल का रास्ता चुनना था। नीरज और चमन ने उदय को अंतिम विदाई देते हुए कहा, मित्र, यूनिवर्सिटी में टॉप आने पर हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। हमें उम्मीद है कि तुम एक न एक दिन हमसे ज्यादा कामयाब साबित होगे। उस वक्त हमें भूल मत जाना। उदय, जो सवर्ण था, उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए बोला, मित्रों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जहाँ भी रहो मुझे मत भूल जाना। मैं जानता हूँ कि हम तीनों को कहीं न कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। हम तीनों के रास्ते अलग अलग जरूर होंगे, लेकिन मंजिल एक होगी। मगर इस सच्चाई को हम तीनों जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाना जितना आसान तुम्हारे लिए है उतना आसान मेरे लिए नहीं है। उदय की बात सुनकर नीरज ने कहा, आखिर तुम्हें नौकरी पाने में दिक्कत क्यों होगी? तुम मेरिट में आए हो। जहां हमें सिर्फ 40% नंबर मिले हैं वहीं तुमने 90% नंबर पाया है। तुम हमसे हर विषय में बेहतर रहे हो, फिर निराशा की बात क्या है? उदय ने नीरज के प्रश्न पर इतना ही कहा, मित्रों, मैं सवर्ण हूँ, गैर आदिवासी, और दस्तावेजों में तुम आदिवासी। यही वजह है कि मेरी योग्यता अधिक होने के बावजूद भी प्रथम अवसर और हक तुम्हें ही प्राप्त होगा। उदय की बात ने नीरज के अंतर्मन को छू लिया। उसने कहा, दोस्त, इस वक्त नौकरी पाने का पहला हक तुम्हारा है। हम दोनों तुम्हारी आर्थिक स्थिति से परिचित हैं। तुमने किस मुसीबत से पढ़ाई पूरी की है यह हम जानते हैं। इस समय नौकरी की अधिक आवश्यकता तुम्हें है। यदि तुम्हें पहले नौकरी नहीं मिली तो यह अन्याय होगा। उदय ने बात को स्पष्ट किया, दोस्त, न्याय और अन्याय ये बातें सिर्फ किताबी हैं, जिनसे संवेदनशीलता का कोई वास्ता नहीं। दो वर्गों में बांटते हुए हमारे बीच खींची गई रेखा अमानवीय है, लेकिन इसे मिटा पाना हमारे वश की बात नहीं। उदय की बातों में सच्चाई थी। उसे स्वीकारते हुए उन्होंने कहा, मित्र, इसमें कोई शक नहीं कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उससे हम उजाले की ओर बढ़ने के बजाय अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। हमें हमारी संस्कृति का वह रूप दिखाया जा रहा है जो नहीं है। हमें वह इतिहास रटाया जा रहा है जिसे विदेशियों ने लिखा है। अंग्रेजों ने लिख दिया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और हमने उसे मान लिया। हमने संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को भी पढ़ा है। उसमें इस बात का कहीं कोई संकेत नहीं है कि आर्य भारतीय न होकर विदेशी हैं। अगर आर्य शुद्ध भारतीय नहीं होते तो वेदों में गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी की स्थान पर दजला और फरात नदियों की स्तुति की गई होती। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मातृभूमि को नहीं भूल सकता। अंग्रेज भारत में बसने के बाद भी लंदन को नहीं भूल सके थे। इतिहासकार सर्वज्ञ नहीं होता, उसकी अपनी मानसिकता होती है। विजेता हमेशा पराजितों के इतिहास को विकृत करता है और यही हमारे साथ हुआ है। उदय ने कहा, मित्रों, अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा है। कॉलेज और सच्चाई की दुनिया अलग अलग है। अब हमें सत्य को देखना है जो कल्पना से भिन्न है। हमारे देश में हर जाति और धर्म के लोग गरीब हैं। गरीबों को ऊपर उठाना हमारा दायित्व है, लेकिन इसके लिए जाति और धर्म को नहीं

0: आर्थिक स्तर को मदद का आधार बनाया जाना चाहिए। मगर अफसोस इस बात की है कि वोट की राजनीति ने हमारे आंगन ही नहीं बांटे बल्कि दिल और विचार भी बांट दिया है। इस आपसी बातचीत के बाद तीनों मित्र कॉलेज की चार दीवारी से हमेशा के लिए बाहर हो गए। आज तीनों मित्र एक साल के बाद मिले थे। तीनों ही उच्च पदों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए थे। सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच सिर्फ तीन पद थे, दो पद आरक्षित वर्ग के लिए तथा एक पद अनारक्षित था। उदय इसी अनारक्षित पद पर नियुक्ति के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया था। जब वह इंटरव्यू देने के लिए निकल रहा था तब उसकी माँ ने अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी यात्रा के खर्च का प्रबंध किया था। माँ के सिवाय उदय का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं था। विदा लेते वक्त उसकी आंखों में अनायास ही आंसू छलछला आए। एक बड़े हॉल के बीच शानदार टेबल पर इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी बैठे थे। युवक मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होते और थके भाव से बाहर निकल जाते। जब उदय का नंबर आया तब एक अधिकारी ने प्रश्न किया, क्या तुम आदिवासी हो? उत्तर में उदय ने कहा, संविधान की नजर में नहीं, लेकिन वास्तव में मैं आदिवासी हूँ। इसी देश की माटी में मेरे पुरखे पैदा हुए, रहे और इसी माटी में दब गए। अब आप ही निर्णय करें कि मैं क्या हूँ। उदय के उत्तर ने प्रश्नकर्ता को उलझा दिया। तभी दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, गरीबी इंसान को बेईमान क्यों बना देती है? उदय ने तन्मयता से जवाब दिया, सर आपका यह प्रश्न उल्टा है। गरीबी नहीं वरन अमीरी इंसान को बेईमान बनाती है। आज भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, अमीर या गरीब? देश के गोपनीय कागजात विदेशी हाथों में कौन पहुंचा रहा है, अमीर या गरीब? देश में बद अमन कौन फैला रहा है? दवाओं से लेकर खाने के हर सामान में मिलावट कौन कर रहा है? करों की चोरी कौन कर रहा है? हत्याओं का जाल कौन बुन रहा है, अमीर या गरीब? सच्चाई आप स्वयं जानते हैं। उदय के जवाब से प्रश्न पूछने वाला अधिकारी सन्न रह गया। उदय का हर शब्द आईने की तरह साफ और सच था। तभी फोन की घंटी घनघनाई। रिसीवर को कान से लगाते हुए अधिकारी ने कहा, यस सर, वही होगा जो निर्णय हो चुका है। इंटरव्यू समाप्त हो गया। दो पदों पर नीरज और चमन की नियुक्ति हो गई तथा तीसरे पद पर उदय के योग्य होने के बावजूद मंत्री महोदय का भतीजा पदस्थ हो गया। आज शहर में व्यवस्था के विरोध में हड़ताल का आह्वान युवा मंच ने किया है। आवारा लड़कों का हुजूम निकल पड़ा है। बंद करो का नारा लगाते हुए लड़के सड़कों पर होड़ मचा रहे हैं। एसपी नीरज और कलेक्टर चमन भीड़ को नियंत्रित करने सदल बल आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि उदय आवारा लड़कों का लीडर हो गया है। दुकानें बंद कराने में वह सबसे आगे है, सबसे आगे।
1: अभी आपने सुना श्री सुरेंद्र कश्यप द्वारा कहानी पाठ। साहित्यिकी के इस अंक में संपादकीय के विचार, कविता की संवेदनाएं और कहानी के अनुभवों के माध्यम से साहित्य के विविध रूपों से साक्षात्कार हुआ। कभी विचारों ने दिशा दी, कभी भावनाओं ने मन को छुआ और कभी कहानी ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया। साहित्य की यही विशेषता है कि वह बिना किसी आग्रह के धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है और हमें समय, समाज तथा खुद से जोड़ती है। शब्दों के इसी संसार में हम अपने अनुभवों को पहचानते हैं और दूसरों के जीवन से भी एक आत्मीय संबंध स्थापित कर पाते हैं। अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां, साहित्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। इन्हीं भावों के साथ साहित्य की कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपने साथी अक्षय रंजन वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य पत्रिका। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार, प्रस्तुति सहायक अक्षय रंजन वर्मा। मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12 आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और CIET द्वारा उमंग प्रायोजित कार्यक्रम दीदी की गोठ दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे। मीडियम वेब और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आज का हमारा विषय समर्पित है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को। विज्ञान, तकनीक और नवाचार ने आज मानव जीवन को नई दिशा दी है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है और आधुनिक तकनीक देश के विकास को नई गति प्रदान कर रही है। साथियों, हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की याद दिलाता है। साथियों, पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के साथ भारत ने विश्व को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। यह दिन हमें आत्मविश्वास, अनुसंधान और नवाचार की प्रेरणा देता है। आज विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल शिक्षा जैसी सुविधाएं विज्ञान और तकनीक की ही देन है। कार्यक्रम में जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ और भी बातों के लिए और गीतों के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म गुलामी का गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, तकनीक ने जीवन को सरल और तेज बना दिया है। आज गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है, बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसान आधुनिक तकनीकों की सहायता से बेहतर खेती कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए चंद्रयान और सूर्य मिशन ने पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और देश की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रमाण है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म कभी कभी का ये नगमा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम गुंजन में आज का विषय है विज्ञान, तकनीक, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत, जनगणना, जागरूकता और रेडियो का महत्व। साथियों, अब हम बातें करते हैं नवाचार अर्थात नई सोच की। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है नई सोच यानी नवाचार। आज भारत के युवा स्टार्टअप, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डिजिटल टेक्निक के क्षेत्र में शानदार कार्य और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभिमान नहीं बल्कि देश को मजबूत और स्वावलंबी बनाने का संकल्प है। जब हम स्वदेशी उत्पादों और तकनीकों को अपनाते हैं तब देश की प्रगति और अधिक तेजी से होती है। साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तकनीक ने नई क्रांति लाई है। ऑनलाइन कक्षाओं ने दूर दराज के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई है। वहीं आधुनिक चिकित्सा तकनीकों ने उपचार को अधिक सरल और प्रभावी भी बनाया है। विज्ञान हमें तर्क करना और अंधविश्वास से दूर रहना सिखाता है। वैज्ञानिक सोच ही समाज को प्रगतिशील

फील बनाती हैं। कार्यक्रम में कुछ और भी बातें होंगी, उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म आखिर क्यों का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में एक बार फिर से। साथियों, हमारे महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी थी। उनका जीवन हमें मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति का संदेश देता है। आज भारत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी मिसाइलें, आधुनिक उपकरण और नई तकनीकें देश की शक्ति को मजबूत और सशक्त बना रही हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म लव स्टोरी का गीत।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए सही जानकारी और जागरूकता बहुत आवश्यक होती है। इसी उद्देश्य से जनगणना का कार्य किया जाता है, जो कि वर्तमान में हमारे प्रदेश, हमारे जिले में शुरू है। भारत के मुख्य पंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित जनगणना देश की योजनाओं और विकास कार्यों का आधार होती है। इससे सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी आवश्यकताओं की सही जानकारी मिलती है। हम सभी

का कर्तव्य है कि जनगणना के समय सही और पूर्ण जानकारी देकर देश के विकास में सहयोग करें और अपने देशभक्त होने का परिचय भी दें। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये प्यारा सा गीत। फिल्म है नाम

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, आधुनिक तकनीक के इस युग में भी रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। रेडियो आज भी गांवों, दूरस्थ क्षेत्रों और सामान्य जनमानस तक सहजता से पहुंचने वाला सबसे सरल और सहज माध्यम है। समाचार, शिक्षा, मौसम की जानकारी, कृषि सलाह और जागरूकता फैलाने में रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सच माने तो यह मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण और सरल माध्यम भी है। यही कारण है कि आज लोग रेडियो से अपने दिलों से जुड़े हुए हैं। विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग तभी सार्थक है जब उसका उद्देश्य मानव कल्याण हो। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल जागरूकता जैसे क्षेत्रों में विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक तकनीकें पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायता कर रही हैं। हमें तकनीक का उपयोग सदैव सकारात्मक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का गीत।

साथियों, बढ़ती गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। तेज़ धूप और लू से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं, ORS का सेवन करें, साथ ही नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का भी अधिकाधिक उपयोग करें। दोपहर की तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें और बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता, संतुलित भोजन और सावधानी ही अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है। विज्ञान हमें जागरूक और सुरक्षित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। फिल्म है आया सावन झूम के।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये प्यारा सा नगमा। फिल्म थी भीगी पलकें। तो श्रोताओं, विज्ञान, तकनीक, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत, जनगणना, जागरूकता और रेडियो के महत्व पर आधारित कार्यक्रम गुंजन का आज का अंक बस इतना ही। आइए हम सभी वैज्ञानिक सोच अपनाएं, तकनीक का सदुपयोग करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। इसी शुभकामना के साथ मुझे यानी आपके रेडियो साथी गोपेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल सुबह राजधानी रायपुर में वाकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शाह को बस्तर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की जानकारी देंगे। सरकार ने इस साल सितंबर महीने या अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के पहले दिन श्री पासवान ने नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री पासवान ने राज्य में वीबीजी रामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल 15 मई को वाकाथॉन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वाकाथॉन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकाथॉन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन से होगी। यह वाकाथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और ओसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल 15 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। चांपा रेलवे स्टेशन पर 4थी रेल लाइन जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक काम चलेगा। इस दौरान 63 मेल एक्सप्रेस और 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। दुर्ग जिले के पुराना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के नीचे खेल रहे 18 वर्षीय किशोर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। जशपुर जिले के दोकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप

वाहन की तलाशी के दौरान 200 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। आरोपी इस गांजे को कच्चे आम की क्रेट के नीचे पैकेटों में छिपा कर ले जा रहे थे। इस गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है और संस्कार भारती द्वारा कल से राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना के बाद आइए एक नज़र डालें आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों पर। सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम घर आंगन में आज बातचीत का विषय होगा परिवार, मजबूत रिश्तों का आधार। साथ ही आज बातचीत होगी आत्मनिर्भरता महिलाओं हेतु जरूरी विषय पर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दोपहर 1:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे हमारे रायपुर केंद्र से। साथ ही दोपहर 2:30 पर यह कार्यक्रम हमारे अंबिकापुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधाम सुनेंगे दोपहर 2:45 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युवा सोच और महफिल। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। सामूहिक चर्चा का विषय होगा मजबूत परिवार व्यवस्था से सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। साथ ही बातें होंगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। शाम 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी। कार्यक्रम में आज हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर PK भगत उद्यानिकी। विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जी की देखभाल कैसे करें। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ लोकगीत और साथ में मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आज आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार। प्रस्तुति सहायक हैं

0: गांवकर
1: गीत।
2: हमर गांव गवई कर संस्कृति, खान पान और नाच गान भला कौन ला नहीं लुभाए। काही मौसम हो, गर्मी, जाड़ा, बरसात, अगर गांव गवई कर गीत गान ला सुन लेनी तो हमर सबो दुख पीरा हर बिसराए जाएल। ऐसने हवे हमर कार्यक्रम गांव कर गीत, जेकर में राउर मन करती फोन कर माध्यम से अपन पसंद कर लोकगीत कर फरमाइश और हमरे सुनवाती राउर मन कर पसंद कर लोकगीत। ता देर नहीं करती और झोंकती काकर आई सवे आज पहली फोन। हेलो, गांवकर गीत कार्यक्रम। हाँ, गांवकर गीत कार्यक्रम।
3: राम राम भैया। राम राम।
2: राम राम भैया। कौन भैया बोले थे?
3: हम भी का बोले, राजकुमार निभानी ब्रतन भैया।
2: राम राम राजकुमार जी।
3: हाँ, मोर संग चलोगा अच्छे गाना ही छते जरा सुने कृष भैया।
2: राउर पर पसंद कर गीत है नहीं?
3: हाँ भैया।
2: और का काम बुता चलता है राउर कर?
3: काम में मुझे दुकान में बैठे रहे तो मैं सोचे फोन लगाते लग गए भैया।
2: बहुत बढ़िया करें भाई राउर कार्यक्रम हमर गांव कर गीत में फोन करें। लेकिन सुनी राउर कर पसंद करे लोकगीत।
3: हाँ भैया। राम राम भैया।

0: हेलो, गांव का गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते, कौन भैया बोला थी?
1: राम राम, जय जोहार। आप मन के जम्मो कंपेयर संगवारी मन ला
0: राउर मल भाई, बहुत बहुत जोहार। आओ बताई का हाल चाल।
1: मैं आप मन के केंद्र के पुराना नियमित श्रोता बोला था भैया, सुरेश कुमार सारथी।
0: अच्छा, राम राम सुरेश जी।
1: कुर्मी पारा बेमेतरा जिला से।
0: का हाल चाल राउर कर?
1: हाँ सब बहुत बढ़िया है भैया, अभी गर्मी बहुत है।
0: गर्मी तो
1: जब मैं सारथी हूँ तो ड्राइवर हूँ भैया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: गाड़ी चलाता हूँ, वाहन चलाता हूँ। अब हमारे जमाने के तो रथ है, घोड़ा टांगा है, तो सब नंद आ गए क्या है।
0: हाँ।
1: सारथी मन के एक उतर ही भैया के गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना।
0: तो दे कार्यक्रम हमार गांव का गीत ला सुनते रहो रे।
1: हाँ हम तो सुनते रही थे
0: अच्छा,
1: भैया। और सबो कार्यक्रम में भाग लेता मैं तो, हम चिट्ठी पाती जाते रही थे आप मन के केंद्र में।
0: देखिए राउर मन कर चिट्ठी आयल नहीं तो हम मतलब बहुत अच्छा लागते, और हम लागते कि कैसे हमने कार्यक्रम ला और बढ़िया लहन करी।
1: आप मन के कार्यक्रम पेश करे घरों का अंदाज है, मतलब बहुत बढ़िया लगते भैया। आप मन के मीठी मीठी बोली बतरा से अब मन लाजत है, और रेडियो सुने बिगड़ रहा नहीं भैया।
0: सही बात है।
1: अभी रेडियो अच्छा था हमारे मन के।

0: जीवन जिंदगानी है।
1: हाँ हाँ हाँ राउर मन कर रही प्रेम दुलार हर तो हमन ला भाई कार्यक्रम ला अच्छा करे बर प्रेरित करते।
0: हाँ
1: तो
0: भैया, हाँ हाँ
1: ने सुरेश जी आज फोन करे ही गांव कर गीत कार्यक्रम में कहा सुनब रो रहे।
0: आज सुना दो भैया लक्ष्मण मसूरिया के गाना वाला।
1: तो सुरेश जी ये दे राउर हमर कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे नहीं राउर ला बहुत बहुत धन्यवाद और लेगी सुनी राउर कर पसंद करे लोग गीत।

0: हाँ भैया नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, कौन भैया बोले थे?
0: हाँ भैया, मैं ग्राम मुंडा टोला विकास खंड डोंडी लोहारा जिला बालू छत्तीसगढ़ के डोमेंद्र नेताम बोला तो भैया।
1: राम राम डोमेंद्र जी,
0: राम राम भैया, जय जोहार।
1: जय जोहार। और का हाल चाल?
0: हाल चाल तो सब बढ़िया है भैया।
1: बने बूता चलता है?
0: हाँ,
1: का गीत सुनब रो रे?
0: आज के कार्यक्रम में वो कुलेश्वर ताम्रा का रहा, संगवारी मन के गायक तो गीत रीस भैया, वो बेल तरी बेलन बेलन तरी डोल वाले गीत सुना दे रहे हो भैया।

0: हेलो हेलो, गांव का गीत कार्यक्रम।
1: राम राम दादा, जय राम।
0: राम राम। कौन भैया बोले थे?
1: ग्राम राजापुर ले खेल से मर काम बोला भैया।
0: राम राम खेल साई जी।
1: राम राम,
0: और का हाल चाल?
1: सब बढ़िया है?
0: बढ़िया है नहीं, काम बुता
1: चला थे
0: ऐसे ये कार्यक्रम गांव का गीत में फोन करे ही का गीत सुन बरो रे।
1: ममता चंद्राकर कोनो भी गीत सुना दिए भैया।
0: अच्छा, तो खेल साहब जी राउर हमारे कार्यक्रम गांव के गीत में फोन करे नहीं राउर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप मतलब भी बहुत बहुत कॉल शामिल कर लेकिन धन्यवाद।
0: सुनील राउत कर पसंद करे लोग गीत।

0: हेलो गांव कर गीत कार्यक्रम।
1: हाँ, राम राम भैया।
0: राम राम। कौन भैया बोला थे?
1: हाँ, मैं मानिक खुशराम प्रजापति बोला था,
0: राम राम मानिक
1: राम
0: जी।
1: राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
0: राम राम मानिक जी, का हाल चाल है राउरकर मानिक जी?
1: हाँ भैया, सब बने हैं भैया। और हमन मन तो यही आप मन के कार्यक्रम ला लगातार सुनत रहते भैया, बड़ा सुघर लगते।
0: भाई हम मन तो देखिए राउर मन कर फोन लाया गुरत रहती।
1: हाँ भैया, वे दे आज फोन लग गए है भैया, बड़ा सुंदर लागत है। काहे कि हम बीच बीच में छोड़ देते ना, काहे कि और भी साथी मतलब मौका मिले कर बा।
0: देखिए हमर कर प्रयास रहते कि भाई जम्मू श्रोता मन कर फोन ला शामिल करी, बाकी कभू
1: हाँ
0: कभू संभव नहीं हो पाए हर।
1: हाँ भैया, तो काहे समय भी तो ओकर पाबंदी में रहते, तो एकर खातिर नहीं हो पाते।
0: हाँ, हम मला दुख तकलीफ लागते है, बाकी कैसे करी, नहीं समय कर बंधन
1: हाँ,
0: है।
1: समय का बंधक है भैया, वही समय में लग जाते तो बढ़िया है। हाँ, अभी तो धूप भी बहुत बढ़ गए है भैया, कभी आंधी तूफान आ जाते, बारिश हो जाते, तहाँ ले एकदम भपकी मारे लगते। तो
0: सही बात है।
1: एक बढ़िया से श्रोता साथी मतलब कहना चाहूँ कि धूप से बचें और पानी ज्यादा ले ज्यादा पिए और अपन स्वास्थ्य में ध्यान दें, बस यही कहना चाहूँ भैया।
0: हाँ, कबर की शरीर बढ़िया रही तो हमारे काम बुतार भी बढ़िया हो ही।
1: हाँ,
0: तो
1: और
0: मानिक
1: यही
0: ना,
1: संग मोर श्रोता साथी हमें उमल अभी नाम लेना चाहूँ भैया।
0: लेगी तो ले नाम मानिक जी।
1: हाँ, रामचंद्र गुप्ता जी हमें, खेल साहे मरकाम, प्रेम साहे राजवाड़े, कुलेश्वर राजवाड़े, और सरगुजा रेडियो श्रोता संघ का सबो साथी मल्ला, मैं केदार यादव का स्वर में एक गीत सुनवाना चाहूँ भैया। गीत के बोल हवे, हमरो पूछिए भैया कौन आनी है।
0: हमरा पूछे भैया, तो
1: हाँ
0: सबले पहली तो राउर मरकर जितना शंका है सब बोला भाई राम राम जोहार,
1: जोहार भैया।
0: और लेगी सुनिए राउर मनकर पसंद करे लोकगीत।
1: हाँ, फोन शामिल करे बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: राउर लवी हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भाटो।
1: भाटो का है या भैया कोनो नहीं है गा हमरो।

दूले तीन के गिनती जाना थवन पुरखा मन कस नहीं चले उचंती नहीं चले उचंती घर नहीं है दुआरी नहीं है पोला नहीं है बारी नहीं है।

0: हेलो, गांवकर गीत कार्यक्रम।
1: हेलो।
0: हाँ, गांवकर गीत कार्यक्रम,
1: हाँ भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते। क्या हाल चाल है?

0: आउट कर लेगी तो सबसे पहले परिचय दे अपन।
1: योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बने तरह ले। राम
0: राम राम जांगड़े जी,
1: राम भैया।
0: आओ बताइए क्या हाल चाल।
1: बस सब गर्मी में आए घरे में रहन गया। हाँ
0: आओ
1: और
0: कहाँ।
1: अभी तो ज्यादा काम धाम घलो नहीं है, सब खेती बाड़ी काम है अभी हो गए है। अब आगामी तैयारी तो थोड़ा से लेट हुए अभी।
0: ऐसे
1: हाँ
0: तो इधर गर्मी का जुताई उताई लग कर दा रहे ना,
1: हाँ
0: ऐसे नहीं तो कह ली तो प्रारंभिक तैयारी कर ले ही राउत नहीं।
1: हाँ
0: हाँ जांगड़े जी, कहता हूँ कि राउ रे हमारे कार्यक्रम गाँव कर गीत में फोन करे, का गीत सुनब।
1: हेलो,
0: हाँ राउत कर आवाज हर कटत है जांगड़े जी।
1: कविता वासनी जी का आवाज में मिल भेद सुना दे हो भैया।
0: कौन सा गीत
1: ये पता ले जा रही गाड़ी आ रहे।
0: पता रह जा रहे गाड़ी वाला। राहुल हमारे
1: हाँ
0: कार्यक्रम गांव का गीत में फोन करें राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ, गांवकर गीत कार्यक्रम।
0: हाँ, कृष्णा तिवारी सर जी, राम राम।
1: राम राम।
0: मैं सुपरस्टार रेडियो सोटा संघ फैलस्तान संग्रह जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम सराज वाले बात कर रहा हूँ।
1: राम राम प्रेम साहब जी।
0: राम राम।
1: अब का हाल चाल राउर कर?
0: हाल तो ठीक है, हम नगद जोर से चिंचना के करीब हवे।
1: तो सही बात है
0: ना, शरीर में के दफे जरंग जना जाता।
1: अब काम अब उतार नहीं उसराए कही था।
0: हाँ, तो मैं यही कहूँ कि भाई सुबह के काम वाला जल्दी उठ के करें और दोपहर में अपन छाँव में ही छाँव कर काम करें, ज्यादा घाम वाला जल्दी करें।

0: कोशिश करें सर, इधर सवेरे जैसे हो रहे 3-4 बजे अपन काम में लगे ना, 4 बजे
1: भरी दोपहरिया में जेहन करे नहीं काबर की होई घनी तो गर्म हवा हर चलते
0: से लू मारे का संभावना रहते
1: है
0: ना, और खीरा तरबूज खाते रहना चाहिए भाई मौसम में है ना,
1: शरीर ला ठंडा करते नहीं
0: और गन्ने गन्ना का जूस पीना चाहिए भाई
1: ताकि
0: शरीर में कोई तरह से पानी का दिक्कत ना हो।
1: तो प्रेम साई जी राउर कर पसंद कर गीत ला बताते हैं
0: तो आज विजय सिद्धार्थ की आवाज में बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत बजा दिया आप रघुमन का पसंद से।
1: अच्छा तो प्रेम साई जी राहुल हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करें राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: हेलो, गांव कर गीत कार्यक्रम।
1: हेलो।
0: हाँ, गांव कर गीत कार्यक्रम।
1: आओ किशनू भैया, राम राम।
0: राम राम। कौन भैया बोला थी?
1: भैया मैं मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया।
0: राम राम मधुसूदन जी।
1: राम राम भैया, तारकेश्वरपुर विकासखंड प्रेम नगर जिला सूरजपुर ले बोला था भैया।
0: और का हाल चाल?
1: तो कब भैया, हाल चाल तो ठीक है। कब अभी पानी बदरी घामा चाही कहा। ऐसा में तो भाई लड़का मन कर सियान हो, सब जन कर भाई तबीयत खराब होए के भी संभावना बने रहते कहीं दे नहीं। हाँ, कहा है कि खेती पाती के भी

0: तारकेश्वरपुर, विकासखंड प्रेम नगर, जिला सूरजपुर ले बोला था भैया।
1: और का हाल चाल?
0: तो कब भैया हाल चाल तो ठीक है। कहा अभी पानी बदरी घामा चाही कहा वैसन में तो भाई लड़का मन कर सियान हो सब जन कर भाई तबियत खराब होए के भी संभावना बने रहते कहीं दे ही नहीं। हाँ कहा है कि खेती पाती के भी तैयारी चलत है, रवि सीजन खरीफ सीजन भी आई गई से खाद गुंठल अभी करत है ही कहब। हाँ आप मतलब जो सुघर सुघर जानकारी बताता तेला भी सुनत रहती।
1: राउर बनकर देखिए ही मया दुलार कथे नहीं तेहर हमला प्रेरित करते कि भाई कार्यक्रम में का नवा आउ जोड़िए कैसे बढ़िया लेहन कार्यक्रम ल करिए।
0: हाँ,
1: तो
0: सही बोला थी।
1: मधुसूदन जी राउर दे हमर कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे ही कहा गीत सुनब रोरे
0: कांति कुर रहे हैं ऊपर गाना ला सुना दिए।
1: राउर दे
0: हाँ
1: हमर कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करें राउर ल बहुत

0: हाँ हेलो, गांव का गीत कार्यक्रम।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन भैया बोला थी?
1: अब मैं बोला था गंडई टी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवांगन।
0: राम राम जागेश्वर जी।
1: राम राम राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार, का हाल चाल राउर कर?
1: अरे बहुत अच्छा हाल चाल है भैया।
0: तो आज ये का गीत सुना रे?
1: दुर्गा राम मरकाम के सुना दो भैया, चल संगी देवतल मनाओ।
0: अच्छा, इधर राहुल हमारे कार्यक्रम गांव घर गीत में फोन करे नहीं राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया, धन्यवाद।

0: ता यही गीत कर साथ समेटत ही आज कर कार्यक्रम गांव कर गीत। ये कार्यक्रम कर प्रस्तुत करता रहिन परमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक मैं राउर मनकर अपन किष्णु भैया यानी कि कृष्णानंद तिवारी।
1: गांव कर गीत।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुतकर्ता थे परमेंद्र कुमार, प्रस्तुति सहायक थे कृष्णानंद तिवारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वेरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश

0: धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए गए। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शर्मिली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे नीरज, संगीत निर्देशन SD बर्मन का था। इस गीत को सुनना चाहा था रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्स

राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने गीत सुनना चाहा था। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से फरमाइश करता थे मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म इज्जत का ये गीत। बोल हैं सहीर लुधियानवी के संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीत को लिखा था सहीर लुधियानवी ने। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा था श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सियावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से फरमाइश करता थे कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू ने इस गीत के लिए पत्र भेजा था। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रिजकांत सारथी ने गीत सुनना चाहा था। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमारे श्रोता हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतेक बीरक और मीका बीरक ने गीत सुनना चाहा था।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। बोरसरा नीला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महबूब की मेहंदी फिल्म का एक गीत, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत। संगीत निर्देशन

रवी का है और बोल हैं सहीर लुधियानवी के। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। मोहाली पंजाब से फरमाइश करता है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से हैं हमारे श्रोता विश्वनाथ साहू, शर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने इस गीत को सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनिए ये गीत।

0: कभी कभी।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना है लता मंगेशकर को फिल्म आंखें में।
2: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
3: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
2: अच्छा, वो कैसे?
3: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
2: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
3: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
2: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
3: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आप सुनिए मन्ना डे की आवाज में फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है और गीत को लिखा है नीरज ने। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नौमी सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई ने इस गीत के लिए पत्र भेजा है। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने गीत सुनना चाहा है। जरूर वरुण महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे और कार्तिक युवराज ने पत्र भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं मन्नडे के गाया फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

0: हम जोकर फिल्म का ये गीत आवाज थी मन्ना डे की।
1: चलो ख्वाबों को हकीकत बनाएं, सिर्फ अपनों की नहीं गैरों की भी दुनिया महकाएं, मुस्कुराहट बांटें, खुशियां बांटें और बांटें हम सुख दुख सारे, घर आंगन के फोन इन के सहारे, घर आंगन में मन की बातें बतियाएं, मनपसंद गीतों का आनंद पाएं, इसके लिए हमें फोन लगाएं। हर शनिवार सुबह 10:30 से 11 के बीच हमारे नंबर हैं 231-917 और 231-918, कोड है 07774 और कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने।
0: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म काजल का ये गीत। संगीत निर्देशन है रवि का और गीत को लिखा है सहीर लुधियानवी ने। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवहंकर, राही सरिता गांवहंकर, सिद्धांत गांवहंकर, प्रिंस एकांश गांवहंकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गांवहंकर, वैशाली गांवहंकर, श्वेता सुमित गांवहंकर, कुमारी ध्वनि गांवहंकर ने गीत सुनना चाहा है। गरीब नवाज कॉलोनी वंदरा नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने गीत सुनना चाहा है। शिवाजी चौक राजिम से हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से पत्र भेजा है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव ने। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं काजल फिल्म का ये गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर नटवर लाल फिल्म का एक गीत, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहा था सपना संगीता रोड। इंदौर से हमारे श्रोता लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेस, साक्षी मनन और तानिया ने। साधु सह राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने अपनी फरमाइश भेजी थी। कार्यक्रम में श्रोताओं अंतिम गीत के फरमाइश करता हैं बेरडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची और तनिया कर्मकर। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आंधी फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल हैं गुलजार के, संगीत निर्देशन RD बर्मन का है।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म आंधी के इस गीत के साथ आज फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेब और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष

0: पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी की गई उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शाह को बस्तर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की जानकारी देंगे। राज्यपाल रमेश डेका से आज लोकभवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के पहले दिन श्री पासवान ने कल नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री पासवान ने राज्य में वीबीजी रामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में थाना सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के खातों में साइबर ठगी की रकम के लेन देन के सबूत मिले। पुलिस ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने में किया गया। मामले की जांच जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम दौंजरा के बिझरवार में पारिवारिक जमीन विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार पैतृक जमीन पर लगे बांस के पेड़ों की कटाई को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। कहासुनी बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर टंगिया जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल 15 मई को वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वॉकेथॉन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन्स से होगी। ये वॉकेथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और उसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी और पश्चिम से पूर्व तक बनी एक द्रोणिका के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है। रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर, रायगढ़ और जशपुर के कई इलाकों में कल बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 362 संदिग्ध म्यूल खाताधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए गए मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 12 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओ, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को

0: सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम

0: अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
1: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
2: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
1: आजा खेलते हैं।
2: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
3: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
2: अच्छा वो क्या?
3: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
2: हाँ दूसरा क्या?
3: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
1: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपा

0: आठ सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।

0: दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: स्वागत है साथियों आप सभी का आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन में। श्रोताओं आज का शीर्षक है मौसम। दोस्तों मौसम की अपनी एक खुशबू होती है और मौसम की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना एक कला है। हवाओं का जादू भी चलता है और कभी कभी ठंडी हवा का एक झोंका दिन भर की थकान मिटाने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों कभी कभी सर्दियों की वो गुनगुनी धूप बिल्कुल किसी पुराने दोस्त की झप्पी जैसी सुकून देने वाली होती है। दोस्तों मौसम और मोहब्बत को मिलाकर कही गई बातें दिल को छू लेती है। साजन के साथ मौसम का लुत्फ उठाना हो तो बातों में थोड़ी और गहराई और अपनापन होना चाहिए। दोस्तों बातें और करेंगे, सुनिए ये गीत।
1: ये रातें ये मौसम।

दोस्तों, मौसम प्रकृति का वह रूप है जो हमारे जीवन में नवीनता और उत्साह भर देता है। मौसम शब्द सुनते ही मन में एक अलग सी ताजगी, यादें और एहसास जाग उठते हैं। मौसम सिर्फ तापमान का बदलना नहीं,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में बोल थे रविंदर के। श्रोताओं, मौसम और मोहब्बत का रिश्ता सदियों पुराना और गहरा है। कहते हैं कि दिल के जज्बात अगर अक्सर बाहर के वातावरण से प्रभावित होते हैं, मौसम का एक अलग अंदाज होता है। दोस्तों, मौसम हमारे मूड को सीधा प्रभावित करता है। जब आसमान में काले बादल छाए होते हैं तो, या ठंडी हवा चलती है तो, या मन में कुछ विचार आते हैं, एक सुहाना मौसम अकेलेपन को शिद्दत में और साथ को जश्न में बदल देता है। कार्यक्रम में आप सुनिए जानवर फिल्म का एक गीत।

गीत को लिखा था समीर ने। श्रोता, मोहब्बत में हर मौसम एक खास याद लेकर आता है। किसी के साथ बिताई गई हर वो शाम या सर्दी की वो धूप वाली दोपहर, सालों बाद भी जब मौसम लौटता है तो पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। मौसम मोहब्बत के लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मनहर उदास का गाया फिल्म जानवर का ये गीत। संगीत निर्देशन आनंद श्रीवास्तव का था।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत। शुदा मौसम पे बातें चल रही हैं।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजिए और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
4: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
3: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
4: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
3: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 KHz के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
0: श्रोताओं, मौसम मोहब्बत की भाषा है, यह बिन कहे दिल की बात कह देता है और प्यार के एहसास को और भी गहरा और यादगार बना देता है। कहते हैं कि मौसम सिर्फ हवाओं का बदलना नहीं है, ठीक उसी तरह मोहब्बत भी दिल का एक मौसम है। जिस तरह प्रकृति बिना मौसम के अधूरी है, उसी तरह इंसान का जीवन बिना मोहब्बत के बेरंग है। दोस्तों, मौसम और मोहब्बत का रिश्ता इतना गहरा है कि एक के बदलते ही दूसरे का मिजाज खुद ब खुद बदल जाता है।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के गाए सिंदूर फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक बजने को हैं हिंदी में समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए।

0: जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण।
3: मृदा परीक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों जैसे नत्रजन, स्फूर, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एवं कॉपर का आकलन किया जाता है। मृदा परीक्षण से यह जानकारी मिलती है कि किसी मृदा में किन पोषक तत्वों की कमी है अथवा कौन से पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तत्पश्चात मृदा में इन उपलब्ध तत्वों की मात्रा के आधार पर फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की अनुशंसा की जाती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने एवं अच्छी वृद्धि

0: वृद्धि तथा विकास करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन 3 तत्वों की पूर्ति पौधे पानी एवं वायु से करते हैं। शेष 14 तत्वों में से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास ऐसे हैं जिसे पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं और सामान्यतः रासायनिक उर्वरकों जिसमें यूरिया, DAP, सुपरफास्फेट एवं म्यूरोटाइप पोटास के रूप में दिए जाते हैं। अन्य तत्वों की आपूर्ति भूमि से ही हो जाती है। लगातार एवं सघन फसल लेने के कारण मृदा में इन तत्वों की कमी हो रही है तथा कार्बनिक खादों के प्रयोग न करने से उर्वरता असंतुलित हो गई है। यह जानकारी कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है और कितना प्रयोग करना है, इसका पता सिर्फ मृदा परीक्षण से ही संभव है। इसके साथ साथ मिट्टी परीक्षण द्वारा pH मान का भी पता लगाया जाता है ताकि यह ज्ञात हो सके कि मृदा के लिए किसी सुधारक जैसे चूना या जिप्सम देने की आवश्यकता है या नहीं। नमूने के लिए मृदा एकत्रित करते समय कुछ खास बातें ध्यान में अवश्य रखें। कभी भी सिंचाई की नाली के समीप से नमूने के लिए मृदा नहीं लें। इसी प्रकार ऐसे स्थान से जहां सतह की मृदा बह गई हो, मेड़ ऊपर से, पेड़ के नीचे से, कुएं व खाद के ढेर के समीप से भी नमूने हेतु मृदा नहीं लेनी चाहिए। यदि ऐसे स्थानों से मृदा लेकर नमूना तैयार किया गया हो तो उसके परीक्षण परिणाम उस क्षेत्र या खेत के अनुसार नहीं होंगे और मृदा परीक्षण का पूरा उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। मृदा का नमूना अलग अलग गहराई से लिया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल उगाई जाएगी। वार्षिक फसलों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन व रेशों की फसलें इत्यादि के लिए ऊपरी 15 सेंटीमीटर की गहराई से मृदा के नमूने लिए जा सकते हैं। जहां फलदार पेड़ अर्थात बगीचा लगाया जाना हो, वहां पर 1 मीटर तक की गहराई से नमूने हेतु मृदा लेनी चाहिए, जिससे मृदा के भीतरी हिस्से में यदि कोई समस्या हो तो उसका पता चल सके। परंतु अलग अलग परतों की मृदा का अलग अलग नमूना लेना चाहिए। मृदा के नमूने लेने के बाद ही यह पता चलता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व एवं इनका पादप जीवन में क्या योगदान है। जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा, बोरान, क्लोरीन, कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम, सिलिकॉन ऐसे तत्व हैं जिनकी पौधों के लिए बेहद आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को जानना किसान भाइयों के लिए बेहद आवश्यक है। किसान भाई यदि मृदा परीक्षण कराएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें इन पोषक तत्वों की जानकारी मिलेगी और पोषक तत्वों की कमी को पूरी की जा सकती है, ताकि किसान भाई जो भी फसल लगाते हैं उससे उनको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय था मृदा परीक्षण से लाभ। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए घर आंगन कार्यक्रम।

नमस्कार बहनों, घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी ऋतु सिंह। बहनों, एक घर आंगन का ढांचा बहुत सी कृत्रिम चीज़ों से मिलकर बना होता है। वह जीवंत तभी होता है जब उसमें प्रेम, विश्वास और अपनत्व की भावना से भरा परिवार रहता हो। ऐसे परिवार में हमेशा सुकून होता है। हर तरह का दुख यहाँ आधा और खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। बहनों, आज की तेज़ भागती जिंदगी में अक्सर रिश्तों के बीच संवाद कम होने लगे हैं। हाथ में रखे मोबाइल व अन्य भौतिकताओं के प्रति आकर्षण से

लोग पास होकर भी दूर हैं, जिससे भावनाएं आहत और रिश्तों में दूरी है, जिसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा हो रहा है। बहनों, रिश्तों से जुड़ी बात पूरी तरह से बिगड़ जाए उससे पहले समय रहते ये आवश्यक है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उन्हें सम्मान दें। थोड़ा अपनापन, थोड़ा सा समय और कुछ मीठे शब्द परिवार को पूरी तरह से जोड़कर रखते हैं। बहनों, परिवार में हम महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्त्रियां परिवार की धुरी की तरह हैं। वे कभी माँ बनकर ममता देती हैं, कभी पत्नी बनकर साथ निभाती हैं, तो कभी बेटी बनकर घर में खुशियां लाती हैं। लेकिन बहनों, आज के समय की मांग है कि महिलाएं परिवार तक ही सीमित ना रहें, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनें। बहनों, आत्मनिर्भरता से महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब एक महिला अपने फैसले स्वयं लेने लगती है, अपने हुनर से आगे बढ़ती है, तब उसका सम्मान समाज में और भी बढ़ जाता है। आज के समय में हमारे आसपास और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महिलाएं छोटे छोटे कामों से अपनी पहचान बना रही हैं। कोई सिलाई कढ़ाई से, कोई ऑनलाइन काम से, तो कोई स्वयं सहायता समूहों से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। और बहनों, देखिए, हमारे प्रयासों में और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं जब परिवार के सभी सदस्य खुलकर महिलाओं का साथ देते हैं। तब रिश्ते और भी मजबूत और सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि सहयोग व विश्वास रिश्तों को और भी अच्छा बना देते हैं। तो बहनों, आइए हम सभी भी अपने परिवार में प्रेम, संवाद और सम्मान को बनाए रखें और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहें। तो बहनों, ये थी आज की आपकी और हमारी बातचीत, और अब कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: और बहनों, हमारे घर आंगन कार्यक्रम में अब समय है गुलदस्ता क्रम का, और आज का गुलदस्ता क्रम सज रहा है कहानी पाठ से, और कहानी पाठ का शीर्षक है सपनों की उड़ान। इसकी प्रस्तुतकर्ता है श्रीमती राजलक्ष्मी पांडे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी पाठ।
5: नमस्कार बहनों, घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत गुलदस्ता क्रम में आज कहानी पाठ का दिन है। तो कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि वह जीवन की सच्चाइयों, अनुभवों और भावनाओं का सुंदर दर्पण भी होती है। हर कहानी अपने भीतर कोई ना कोई संदेश, प्रेरणा और सीख छुपाए रहती है। तो आइए आज इसी क्रम में कहानी सुनते हैं कहानीकार राजलक्ष्मी पांडे जी से।
6: सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कहानी सपनों की उड़ान। यात्रा का समय और शहर की भागदौड़ से अलग ही गांव का मनमोहक दृश्य जैसे स्वागत कर रहे हों। आरती ने कार के शीशे नीचे किए और ताजी हवा का आनंद लेने लगी। प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम, हरे भरे पेड़, कच्चे पक्के मकान, पेड़ की छांव में बैठे और खेतों में काम करते लोग, कुएं से पानी भरकर सिर में मटका रख जाती महिलाएं, खपरेल घर से उठता हुआ धुआं, तड़के की भीनी खुशबू मन में आनंद भरने लगी। बगल में बैठी माँ ने कहा, बेटा पानी देना, प्यास लग रही है। हाँ माँ, देती हूँ। आरती ने पानी की बोतल देखी तो वो खाली हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से कहा, कहीं हैंडपम्प दिखे तो रोक लेना। गांव की एक हाई स्कूल के पास हैंडपम्प से बच्चे पानी भर रहे थे। कार रुकी। आरती की माँ ने कहा, बेटा थोड़ा हम भी हाथ पैर सीधे कर लेते हैं। हाँ माँ, आइए ना। गाड़ी से नीचे उतरने में आरती माँ की सहायता करने लगी। तभी मैडम की आवाज़ आई, बच्चों घंटी बज चुकी है, अपनी अपनी कक्षा में चलो। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। आरती ने बड़े ध्यान से उसे देखा और बोली, मैडम शायद आपका नाम कुंती है। जी मेरा नाम कुंती है, आप मुझे कैसे जानती हैं? कुंती ने कहा। कुंती ने आरती के चेहरे को गौर से देखते हुए सहसा कहा, आपका नाम आरती है क्या? और दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से लिपट गईं। मैं इसी हाई स्कूल में व्याख्याता हूँ आरती, चल मैं तुझे अपना स्कूल दिखाती हूँ और अपने पतिदेव से मिलाती हूँ, उनकी पोस्टिंग भी यही है, कहते हुए कुंती चहक रही थी। सादगी भरा चेहरा, करीने से पहनी हुई सिल्क की साड़ी, बालों की लंबी चोटी, हाथों में प्लेन चूड़ियों के साथ सोने का कंगन और गले में चेन, हाथ में घड़ी पहने हुए, बच्चों का भविष्य संवारने को तत्पर, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, जैसे उसकी सफलता से भरी कहानी कह रहा हो। वर्षों बाद सहेली से मिलने की खुशी ने यात्रा को और यादगार बना दिया और कार में बैठी आरती उन पुराने दिनों में खोने लगी। कुंती एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीब मजदूर परिवार की बेटी थी। माता पिता दोनों मजदूरी करते थे, मुश्किल से उन्हें दोनों समय का खाना नसीब हो पाता था। कुंती पढ़ने में बहुत तेज थी, वो रोज समय से स्कूल जाती, सबसे पहले कक्षा में पहुंचती, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर रहते उनकी सहायता करती, उन्हें समझाती, यह देखकर मास्टर जी उसकी प्रशंसा करते और कहते, खूब मन लगाकर पढ़ो और बड़ी होकर शिक्षिका बनो। कुंती यह सब सुनकर बहुत खुश होती और अपने माता पिता से बताती। उसके पिता बोलते, हम गरीब आदमी बिटिया दो समय का गुजारा नहीं कर पाते, तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे? पर मैं पढ़ना चाहती हूँ पिताजी। बिटिया चाहते तो हम भी यही हैं कि जिस हाल में हम जी रहे हैं उस हाल में हमारे बच्चे न जिए, यह गरीबी हमें कमज़ोर कर देती है। कुंती के प्रयास एवं मन लगाकर पढ़ने का फल मिला। कुंती ने 96% अंक लाकर 8वीं में पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव में सिर्फ 8वीं तक का ही स्कूल था। गांव से 8 किलोमीटर दूर स्कूल था जिसमें 9वीं एवं 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। रोज़ इतना दूर पैदल कैसे जाएगी? और मां ने भी कह दिया, अब स्कूल छोड़, कुछ काम सीख ले, मेहनत मजदूरी करेगी तो दो पैसे हाथ आएंगे, अब तेरे भाई को भी तो पालना है। कुंती चुपचाप चारपाई पर पड़े हाथ पैर चलाकर खेलते भाई को देखने लगी। कहाँ हो कुंती बिटिया? बाहर से मास्टर जी की आवाज़ आई। कुंती दौड़कर बाहर निकली। प्रणाम मास्टर जी। खुश रहो बिटिया, और बताओ स्कूल जाकर नाम लिखवाई कि नहीं? मास्टर जी ने पूछा। नहीं।

अभी नहीं, स्कूल बहुत दूर है, माँ कहती है और लड़कियाँ नहीं जा रही हैं तो कैसे अकेले जाएगी। ठीक तो कह रही हूँ मास्टर जी, इतना दूर स्कूल और लड़की की जात कैसे जाएगी अकेली। क्या करें मास्टर जी, गरीबी ही रुलाती है। कुछ साधन साथ होता तो मैं ही पहुँचा दिया करता। खेत से आकर हाथ पैर धोते हुए उसके पिता सुखन ने कहा। अरे सुखन, मैं तो कह रहा हूँ मेरी साइकिल अब पुरानी हो चली है, कल शहर जाकर नई लाऊँगा, तुम यह साइकिल ले लो। ठीक है मास्टर जी, अभी तो मेरे पास बीड़ी के पत्ते तोड़कर बुरे वक्त के लिए जमा किए गए थोड़े पैसे हैं, आप ले लीजिए, बाकी पैसे मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। सुखन, कुंती मेरी बेटी जैसी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, अगर मेरी थोड़ी सहायता से यह विद्यालय जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटी बड़ी होनहार है, इसकी शिक्षा पर ध्यान दो। अब तो कुंती के सपनों को पंख मिल गए थे। सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम निपटाती, भाई को गोद में खिलाती और समय से तैयार होकर साइकिल से स्कूल जाती। ड्रेस में लगे पैबंद झांकती, सिलाई की परतें देखकर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती। आ गई गरीब पढ़ाई करने, कुंती उनकी बातों का अनसुना कर देती। गांव के मुखिया की बेटी के पुराने ड्रेस उसकी मां ने लाकर दिए थे उसे। टिफिन में भात अचार का टुकड़ा मिर्ची देखकर हंसी उड़ाते और कहते, फटीचर गंवार कहीं की, तुम हमारे साथ बैठकर मत खाना, मजदूर की बेटी। कुंती सोचती कि गरीबों की जिंदगी यही होती है। उसके मन में पढ़ाई के प्रति और ललक बढ़ती, सारी बातें परे कर वह अपनी पढ़ाई में ध्यान देती। हाँ, कभी कभी दादी झुंझलाकर कहती, माँ बाप के साथ जाती तो दो पैसे ज़्यादा मिलते, जब देखो तब किताब खोलकर बैठी रहती है, तेरी किताबें तुझे खाने को देंगी क्या, बंद कर या। उसकी डबडबाई आँखों को देखकर पिता उसे सहारा देते, तू खूब मन लगाकर पढ़ ले बेटा, एक तो मैं नहीं पढ़ पाया, माता पिता की यही बातें सुनकर मजदूरी को चुना, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना तू पूरा करे बेटी और अपने छोटे भाई को भी पढ़ाए। पिता की यह बातें उसे और मजबूती प्रदान करती। कुंती 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर चुकी थी। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था। कैसे होगा, कैसे पढ़ूंगी, सवाल उसे परेशान करने लगे थे। एक दिन कुंती के लिए गाँव के का रिश्ता लेकर आए। सुखन, बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ, यहाँ बेटी की शादी कर दे, लड़का बहुत अच्छा है, नशे पानी से दूर, खेती बाड़ी वाला परिवार है, तेरी बेटी सुखी रहेगी वहाँ, काका ने जोर देकर कहा। नहीं दादा, मैंने सुना है 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, अभी तो मेरी बेटी बस 16 वर्ष की है, गाँव में नुक्कड़ नाटक हुआ था तो मैंने उसमें देखा था, बाल विवाह करना अपराध है और बाल विवाह के भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। ना बाबा, लड़का चाहे कितना भी खेती बाड़ी वाला हो, मैं तो अपनी बिटिया का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं करूंगा। सुनकर कुंती ने राहत की सांस ली। घर का टपकता हुआ छत, कुंती दुखी और परेशान, अब तो दूर में स्कूल भी नहीं है, अपनी आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करूंगी, सोचकर रो पड़ी वह। चिंता मत कर बेटी, भगवान की कृपा से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कुंती की माँ ने अपने शादी में मिले थाली बटुआ और एकमात्र जेवर शहर जाकर बेच दिया, जिससे कुछ पैसे मिले। पिता ने शहर जाकर कक्षा 11वीं में उसका दाखिला करा दिया। अपने शिक्षिका बनने का सपना पूरा करने के लिए उसने बस से आना जाना शुरू कर दिया। वहाँ उसकी मित्रता उसी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की माधुरी से हुई, जिसका घर स्कूल के बगल की कॉलोनी में था। वह उसे टिफिन टाइम में अपने घर लेकर जाती, खाना खिलाती। कुंती, मेरे पास 3 ड्रेस है, एक तू ले ले, एक ही ड्रेस में तुझे परेशानी होती है ना, कुंती को माधुरी ने कहा। कुंती ने बातों में ही उसे बताया था कि वह गरीब परिवार से है और उसके पास एक ही ड्रेस है। नहीं माधुरी, यह मैं नहीं ले सकती, अगर मैंने यह ले लिया तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, समझ कि तूने कहा और मैंने ले लिया, स्वाभिमान भरा सीधा सपाट जवाब। माधुरी, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरे पास बस से आने जाने के थोड़े पैसे ही बचे हैं, कुछ पैसे दादी की दवाई में लग गए, अब मैं आऊँगी जाऊँगी कैसे, तू मेरे घर रह जाना, साथ में रहेंगे पढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, माधुरी ने कहा। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, आखिर मैं तेरे साथ कब तक रहूँगी, मैंने सुना है गांव से शहर जाकर लड़के पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, मेरे साथ भी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कुछ ऐसा ही हो जाता, कुंती ने कहा। माधुरी ने यह बात अपनी माँ को बताई और माँ ने बताया कि उनकी एक सहेली है सरला, जो अक्सर बीमार रहती है, दर्द की वजह से काम भी नहीं कर पाती, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पति बैंक में है, वो बोल रही थी एक दिन कि कोई साथ में रहने वाला मिल जाता तो अच्छा लगता। माधुरी को याद आया, जब उनकी बेटी छुट्टियों में आती है तो उनके साथ बैडमिंटन खेलने जरूर आती है, बात करने पर वो खुश हुई
और उन्होंने एक कमरा दे दिया।

0: दिया। कुंती स्वाभिमानी लड़की थी। मना करने के बाद भी वो घर में झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और पढ़ाई के साथ आंटी का ध्यान भी रखती। उसने अपनी दादी को पारिजात के पत्ते का काढ़ा बनाकर पीते देखा था। वो आंटी को भी काढ़ा बनाकर देने लगी, जिससे उन्हें दर्द में आराम होने लगा था। सुरक्षित जगह, सुखद वातावरण और एक नया परिवार पाकर वह बहुत खुश थी। कभी कभी आंटी ज़बरदस्ती कुछ पैसे भी दे दिया करती, ले ले बेटा, कुछ ले लेना, इतनी दूर से पानी भरकर लाती है मेरे लिए। एक परिवार का सहारा, पिता का हौसला, माँ का आशीर्वाद पाकर कुंती 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी लाकर कॉलेज में दाखिला ले ली। कुंती अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। उसे सुंदर मेहंदी का डिजाइन बनाना आता था। इन सबसे मिले पैसे अब वह घर में देने लगी और थोड़ा बहुत बचत भी करने लगी, इस उम्मीद के साथ कि भाई और बड़ा हो जाए तो उसे बाहर पढ़ने भेजेगी। और लड़कियों की तरह वह फालतू की बातों में ध्यान न लगा, दिन रात मेहनत करती, परिवार की जिम्मेदारी उठाती और पिता उस पर गर्व करते और मास्टर जी खुश होते। कुंती अपनी मेहनत से, अपने माता पिता का हौसला पाकर, मास्टर जी के मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर आज हाई स्कूल में व्याख्याता पद पर पदस्थ थी और अपने विद्यालय में अपने छात्रों को हमेशा मार्गदर्शन देती और कहती कि इंसान अगर हृदय में अडिग विश्वास लेकर दिल से मेहनत करे तो एक दिन मंजिल उसे खुद ही गले लगाती है और इंसान अपने सपनों की उड़ान को हकीकत में प्राप्त करता है। धन्यवाद।
1: राजलक्ष्मी जी ने बहुत ही अच्छी कहानी आज यहाँ प्रस्तुत की है, तो आप बताना चाहेंगी कि इस कहानी में क्या संदेश छुपा है, क्या सोचकर आपने इस कहानी को तैयार किया?
0: यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और पात्र को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और उसके हौसला से, उसके आत्मविश्वास से और उसकी मेहनत को मैंने बहुत करीब से देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कहानी का रूप दूँ जिससे और भी लड़कियों को प्रेरणा मिले।
1: जी, बहुत ही अच्छी सोच आपकी। और बहनों, कहानी सुनकर ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपके मन में क्या क्या विचार इस कहानी को सुनकर उठे। तो राजलक्ष्मी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ आज स्टूडियो में आने के लिए और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बहनों, अभी आपने गुलदस्ता क्रम में सुना कहानी पाठ और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत।

और बहनों, इस गीत के बाद कार्यक्रम में समय है घरेलू नुस्खे के क्रम का। तो आज घर आंगन के घरेलू नुस्खे के क्रम में है तेज गर्मी से त्वचा की देखभाल संबंधी कुछ बेहद ही कारगर नुस्खे। बहनों, तेज गर्मी से चेहरे पर जलन या टैनिंग हो गई हो तो चावल धोने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंकिए मत। इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिए और फिर इस ठंडे हुए पानी को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाइए। त्वचा को ठंडक तो मिलेगी ही, साथ ही त्वचा में चमक भी आएगी। एक दूसरा नुस्खा भी है बहनों कि पुदीने की कुछ पत्तियों को पीसकर उसे उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और चेहरे पर 5 मिनट लगाएं और फिर इसे सादे पानी से धो दें। इससे भी त्वचा को तुरंत ताजगी मिलती है और साथ ही पसीने की चिपचिपाहट भी कम होती है, चेहरा काफ़ी फ्रेश लगता है। और साथ ही में बहनों, इस मौसम में जो तरबूज मिलता है उसका जो सफ़ेद हिस्सा है उसे भी चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ने से त्वचा काफ़ी समय तक हाइड्रेट रहती है और धूप का असर, उसकी जलन और चुभन भी हमें कम महसूस होती है। तो बहनों, आप सभी इन नुस्खों को उपयोग कीजिए और इनके लाभ को अनुभव कीजिए। और इसी के साथ अब कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान का ये गीत।

तो बहनों, ये था हमारा आज का घर आंगन कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड है 497001। हमें मेल करें gharanganair@gmail.com पर। और बहनों, अब आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को ऋतु सिंह का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए ईमेल की गूंज कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कहीं प्यार ना हो जाए, फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल थे सुधाकर शर्मा के, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा था टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, रानीगंज बंगाल से हमारे श्रोता रवि और इंदर ने गीत सुनना चाहा था। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शोर नामदेव, ये हमारे श्रोता बगेरा दुर्ग से। ग्राम सोंगा मगरलोर से ईमेल भेजा था फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन ने। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो ने गीत सुनना चाहा था। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ईमेल करता थे दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। श्रोताओं, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं ईमेल की गूंज कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और बबीता बोट का। छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी किशोर गुप्ता ने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी ने अपनी फरमाइश भेजी है। धतरंगी के हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, ये हमारे श्रोता हैं गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से। अकोला महाराष्ट्र से ईमेल भेजा है रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले ने। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का ईमेल आया है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन अनु मलिक का है।

0: मिक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: अभी आप सुन रहे थे हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतिम गीत के लिए हमें ईमेल आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा, मैंडी शर्मा का। रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का। ज़िला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान। पाटन गुजरात से धीरज वीराबारी ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गोट सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारियों को चंदा
1: और सूरज के तरफ ले
0: जय बिहान।
1: ये काय कर सा चंदा,
2: क्या हुआ दीदी?
1: ओहो, व्हाट्सएप या दिगर माध्यम ले आए कोनो भी ऐप ला इंस्टॉल नहीं करना चाहिए।
2: नहीं भूली हूँ दीदी, ठग नई नई तकनीकों का उपयोग करके लोगों को धोखा दे रहे हैं।
1: हाँ।
2: और खासकर महिलाओं को और स्व सहायता समूहों की दीदियों को निशाना बना रहे हैं।
1: हो काकीला फोन आ रही गई।
2: हाँ
1: हाँ, वो फोन करैया हा, खुदला बैंक अधिकारी बताई।
2: अच्छा।
1: वो बता के भरोसा जीते को कोशिश करत रही।
2: इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक और डिजिटल रूप से भी जागरूक किया जा रहा है।
1: तो दीदी हो, आज हमर दीदी के गोट कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार ले जानकारी दे बर पधारे हमें श्री कवि गुप्ता जी, AIG टेक्निकल सर्विस छत्तीसगढ़ शासन।
2: जय बिहान सर जी, आपका स्वागत है।
3: सभी दीदियों को जय विहान।
2: सर, जैसे आज हम लोग साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम जो है वो किस प्रकार के होते हैं?
3: देखिए दीदी, वैसे तो साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हम रिपोर्ट करते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं तो इस दृष्टि से इसे तीन प्रकार से समझा जा सकता है
2: जी।
3: पहले श्रेणी में जो भी साइबर अपराध महिला एवं बच्चों के

0: साथ होते हैं वो साइबर क्राइम आते हैं, दूसरा ऐसे मामले जहाँ पे पैसे का नुकसान हुआ है या हाँ। फिर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जिसे बोला जाता है
1: जी।
0: और तीसरा अन्य सभी प्रकार के साइबर क्राइम इस श्रेणी में रखे जाते हैं। चूंकि ऑनलाइन जगत में महिलाएं एवं बच्चों को काफी संवेदनशील माना गया है, इसीलिए इनसे संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं इसे विशेष कैटेगरी में रखा गया है।
1: अच्छा।
0: इसमें महिला एवं बच्चे संबंधित कोई अश्लील सामग्री का प्रसारण या ऑनलाइन उत्पीड़न संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी तरीके से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ऐसे मामले आते हैं जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन ठगी के उपरांत पैसे का नुकसान हुआ हो।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा बाकी अन्य जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम हैं, जैसे हैकिंग है या सोशल मीडिया संबंधित साइबर क्राइम है, इसे अन्य साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों प्रकार के साइबर अपराध की शिकायत आप साइबर क्राइम पोर्टल यानी cybercrime cybercrime.gov.in यहाँ पे इस पोर्टल में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने एक प्रकार बताया कि वित्तीय अपराध, तो वर्तमान में किस प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय अपराध हो रहे हैं?
0: दीदी देखिए, ऐसे तो ये जो वित्तीय अपराध है इसके तरीके लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस प्रकार के वित्तीय अपराध चल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी साझा करें।
1: जरूर।
0: इसमें किसी व्यक्ति के जान पहचान या रिश्तेदार बनकर या सरकारी किसी योजना का लाभ देने के नाम पे किसी व्यक्ति को कोई APK फाइल, OTP या लिंक भेज करके भी ठगी की जा रही है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को निवेश में ज़्यादा पैसे का लालच देकर या ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन नौकरी या शॉपिंग के नाम पर भी ठगी काफी की जा रही है।
2: जी, तो सर जी, आजकल वित्तीय धोखाधड़ी का मामला तो बहुत बढ़ा था वह, तो का हमन ऑनलाइन बैंकिंग, UPI या फोन पे जैसे डिजिटल माध्यमन के उपयोग बंद कर देना चाहिए का?
0: देखिए सुरुज दीदी, ये सही है कि ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है
2: जी।
0: लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें डर कर ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग नहीं करना चाहिए। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अज्ञानता, लालच, डर और लापरवाही ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऑनलाइन जगत में यदि कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम कभी भी किसी प्रकार के ऑनलाइन ठगी के शिकार नहीं होंगे और डिजिटल बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं।
2: अच्छा।
0: जैसे OTP पिन कभी शेयर ना करें, किसी भी अनावश्यक लिंक पर क्लिक नहीं करें।
2: अच्छा।
0: फोन पर कोई भी अनजान ऐप इंस्टॉल ना करें, फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करें। याद रखें कि ऑनलाइन दुनिया में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है, अतः इस प्रकार के किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह फोन के माध्यम से यदि कोई आपको अनावश्यक डराकर या धमका कर पैसा मांगता है तो ऐसे व्यक्तियों के बातों में बिल्कुल ना आए। अपना मोबाइल हमेशा अपडेट रखें और शासन द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई साइबर अपराध के शिकार नहीं बनेंगे।
1: तो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उनसे बचने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए दीदी, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उनसे आजकल देखा गया है कि शासकीय योजनाओं का लाभ देकर ठगी की जा रही है। शासन के विभिन्न योजना जैसे जननी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, सिलाई मशीन योजना या शिशु के जन्म में सरकार द्वारा सहायता दी जाती है उसका लाभ देने के नाम पर भी ठगी की जा रही है। ऑनलाइन जगत में अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना व निजी जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है, अतः मैं सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना निजी कोई भी जानकारी, फोटो या वीडियो ऑनलाइन जगत में साझा करने से बचे।
2: सर जी, कहूँ कोनो संग साइबर अपराध हो जाते तो ओला का उपाय करना चाहिए तेन ना बताते हो?
0: दीदी, सबसे जरूरी बात है यदि किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी दीदी के साथ कोई भी धोखाधड़ी या साइबर अपराध हुआ है तो तुरंत एक नंबर है 1930। सभी दीदियों से अनुरोध है कि ये नंबर ला नोट कर लें, 1930। ये सरकार द्वारा चलाया गया एक हेल्पलाइन नंबर है, इसमें डायल करके अपना शिकायत दर्ज करें।
2: अच्छा।
0: या तो फिर इसके अलावा दूसरा विकल्प है नजदीकी साइबर पुलिस थाना चले जाएं या फिर साइबर क्राइम पोर्टल में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा।

0: चाहता हूँ दीदी कि ठगी के बाद अगर तुम्हारे साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी के केस हुई से तो ठगी के बाद यदि तुरंत बिना समय गवाए अगर अपन रिपोर्ट लाते दर्ज करवे तो पैसा मिले की संभावना प्रबल हो जाते है। इसीलिए बिना समय गवाए अपना रिपोर्ट अपनी शिकायत 1930 नजदीकी थाना या साइबर क्राइम पोर्टल में दर्ज कराएं। यदि आपको कोई भी आपका निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो ऐसी शिकायतों को खास तौर पे साइबर क्राइम पोर्टल में महिला एवं बच्चे संबंधित शिकायत की का सेक्शन है, वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करें। शिकायत दर्ज करने के लिए दो विकल्प हैं, आप नामजद अपना नाम दे करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या नाम बताए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों पे जब पुलिस कार्रवाई करती है तो महिला की गोपनीयता एवं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है।
1: सर आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से आप 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, लिंक के माध्यम से ठगी, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग, ऐसे अपराधों से बचने के लिए जो डिजिटल जानकारियां, सावधानियां और कानून के संबंध में आपने विस्तार से जानकारियां प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुने ना दीदी हो, सतर्कता और सही जानकारी ले साइबर अपराध ले बचे जा सकते। दीदी हो, सजग रहो और जागरूक रहो।

0: वर्तमान में समूह की महिलाएं आजीविका संवर्धन हेतु विविध गतिविधियां संचालित कर लखपति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसित हो रही हैं। ऐसे में दीदियों द्वारा वित्तीय सहायता और लेन देन अधिकतर ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है।
1: सही कहे चंदा, आज डिजिटल जमाना में मोबाइल और इंटरनेट ले बैंकिंग, पैसा के लेन देन और सरकारी योजना मन के फायदा सरलता ले मिल जाते। अब गवई गाँव मन में घलो माई लॉगिन मन और स्व सहायता समूह के सदस्य मन मोबाइल के माध्यम ले बैंकिंग सेवा के उपयोग करत हवे।
0: ऐसे में डिजिटल रूप से सशक्त और सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता के साथ साइबर सुरक्षा जरूरी हो जाती है। तो आइए हमारी जागरूक बीसी सखी दीदी श्रीमती गुलची सिदार जय माँ अम्बे स्व सहायता समूह ग्राम अमलडीहा जिला शक्ति से मिलते हैं।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
1: दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
3: मैं 2019 में समूह से जुड़े ओकर बाद मोला बीसी सखी के रूप में चयन किया गिस। मोला बैंकिंग समावेशी के ट्रेनिंग दिया गिस जिन में मैं एक सप्ताह आरसीटी में ट्रेनिंग लेके आईआईबीएफ के एग्जाम फाइट करें और वो मैं उत्तीर्ण रहे। आज वही सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं भारतीय स्टेट बैंक के कियोस्क शाखा ले हूँ और साथ में मोर सीएससी सेंटर भी है जिन में मैं ई डिस्ट्रिक्ट भी चलाता हूँ और आईआरसीटी रेलवे टिकट बुकिंग ऑनलाइन के सारा काम मैं कर लेता हूँ।
0: तो दीदी जैसे बैंकिंग जिन फ्रॉड होते ओखर ले बचे बर आप मन हमर दीदी मनला कैसे सिखाते?
3: के लिए बैंकिंग साक्षरता अभियान चलाया जाता है जिसमें हम लोग कैंप लगाते हैं गांव में और दीदियों को बताते हैं अनजान व्यक्ति कोई ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल भी मत बताइए। यदि आप ओटीपी बता भी देते हैं तो तुरंत तो आप अपने लिंक शाखा में जाइए, अपने खाते का जो लेन देन है वो तुरंत निष्क्रिय कर दीजिए। और जैसे मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, तो उसका पिन कोड चेंज कर लीजिए या तो बैंकिंग ऐप से है उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। कई लोगों को कॉल आता है कि आपको लोन दिया जाएगा जिसके लिए आपको 1500-1000 रुपया आपको हमें देना पड़ेगा करके, जो बैंक आरबीआई के पास पंजीकृत है आप उन्हीं से लीजिए।
0: दीदी दीदी के गोठ में हमारी दीदियां हमसे प्रश्न पूछती हैं टोल फ्री नंबर पर फोन करके। ये जो प्रश्न है ये है पलारी कला की पुष्पा साहू जी का। इन्होंने सवाल पूछा है कि महतारी वंदन का पैसा मिलता है जिसके लिए महिलाओं के मोबाइल पर ओटीपी आता है, कभी कभी फ्रॉड ओटीपी भी आता है, कभी एपीके फाइल्स आती हैं, तो इनमें से सही और गलत की पहचान कैसे करें और ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है?
3: महतारी वंदन का जो पैसा है उसके लिए कोई ओटीपी नहीं आता किसी भी प्रकार से।
0: अच्छा।
3: महतारी वंदन का पैसा सीधा आपके खाते में डाल दिया जाता है और यदि किसी प्रकार का मैसेज

0: है तो आपके बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में 1,000 रुपये जमा कर दिया है करके। और जैसे APK आप टच कर लेते हैं तो उसके लिए ये है कि आप तुरंत अपने साइबर सेल को शिकायत करें, 1930 पर कॉल करके बताएं और 1 घंटा के लिए तो फिलहाल मोबाइल बंद ही कर दीजिए। और पब्लिक प्लेस में जो वाईफाई होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कैफे में हो गया, उसका वाईफाई कनेक्ट करके आप कभी भी बैंकिंग लेन देन ना करें।
1: दीदी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, जागरूक किया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुना था चंदा?
1: हाँ दीदी।
2: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम ले स्व सहायता समूह के दीदी मन, आर्थिक रूप से सशक्त बनत दीदी मन डिजिटल रूप ले भी जागरूक हवें।
1: स्व सहायता समूह की दीदियों के स्वरोजगार को बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से नया आयाम मिला है।
2: हो
1: जानती हो ऐसे में वे कैसे साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ रही है?
2: कैसे,
1: आइए जानते हैं। आप हैं ग्राम कंडोरा धनी टोला जिला जशपुर से श्रीमती सुमन एक्का।
2: जय बिहान दीदी।
0: जय बिहान दीदी।
2: दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
0: मैं सक्रिय महिला का काम 2019 से करती थी। बिहान से जुड़कर FLCRP का प्रशिक्षण लेकर ग्राम संगठन मीटिंग होते हैं, मैं उसमें जाती हूँ और दीदियों को बैठा कर मैं वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूँ, कैंप लगाते हैं।
1: दीदी बैंकिंग जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में कैसे जानकारी देती हैं?
0: उदाहरण को लेके मैं लोगों को बताती हूँ। मेरे से भी खुद ऐसी हो गया है, मेरे हस्बैंड से ही, उनको ये फ्रॉड कॉल आए थे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपके KYC अपडेट नहीं है इसीलिए मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, OTP को आप बताना करके बोले। तो मेरे हस्बैंड को लगे कि सही में बैंक वाले हैं, फिर वो अपने डिटेल रूप से बताना स्टार्ट कर दिया। फिर OTP आया, उन लोग वो दो बार बता दिए OTP को, फिर उनका पैसा 9,700 रुपया ले गए। साइबर क्राइम के बारे में मेरी दीदी का ही उदाहरण दे दे कि मैं अपने गांव में जब जाती हूं तो उनको बताती हूं। मेरे परिवार में ही ऐसे कॉल आ गया था, मेरी दीदी के बेटे को गिरफ्तार कर लिए हैं ऐसा करके, तो मैं उस समय भी मैं सामने ही खड़ी थी तो मेरे को जानकारी था, मैं इसके बारे में बार बार ट्रेनिंग ले चुकी थी। तो मैं अपनी दीदी को मैं मना करी कि ये फ्रॉड, ये साइबर क्राइम वाले हैं, आप इनसे बचिए, यही जागरूक करती हूँ।
2: दीदी जागरूकता अभियान के बारे में बताया, एकर खातिर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: तो सुरता रखो दीदी हो, OTP और पासवर्ड कोनोला नहीं बताना है।
1: किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने का विकल्प बंद रखें और किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत विश्वास न करें, पहले उसे वेरीफाई करें। व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से आए किसी भी ऐप को इंस्टॉल न करें। रोजाना अपने ट्रांजैक्शंस की जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें।
2: जागरूकता और सुरक्षा के संग तरक्की की ये यात्रा बढ़त रहे, यही कामना संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के नवा कहानी लेके फिर मिलवो। तब तक बर देव विदा। जय जोहार, जय बिहार।
3: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता VD सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन नवाचार सही

0: योग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नव

0: सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @yarnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ का सरगुजिया अनुवाद।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कर प्रस्तुति दीदी के गुट सुनवैया जम्मो महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारी मल्ला चंदा
1: और सूरज के तरफ ले
2: जय बिहान।
1: अरे अरे का कर था चंदा, व्हाट्सएप या दीगर माध्यम ले आल कोनो भी एपला इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, भूल गए हस का?
0: नहीं भूले हूँ दीदी, ठग मन नवा नवा तकनीक मन कर उपयोग करके लोग मल्ला धोखा देहत हैं, और खास कर महिला मल्ला और स्व सहायता समूह मन कर दीदी मल्ला निशाना बनात हवे।
1: काकी ला फोन आईस, ओ हरे खुद ला बैंक अधिकारी बता के भरोसा ला जीते के कोशिश करिस।
0: एक रे बर तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कर माध्यम ले महिला मल्ला आर्थिक रूप से सशक्त बनाए कर संगे संगे ओमन के सामाजिक और डिजिटल रूप से भी जागरूक करल जात हवे।
1: दीदी हो, आज हमर दीदी के गोट कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा कर बारे में विस्तार से जानकारी दे बर

0: લાઈન હવે શ્રી કવિ ગુપ્તાજી, એઆઈજી, ટેકનિકલ સર્વિસ, છત્તીસગઢ શાસન.
1: જય બિહાન સરજી, રાઉર સ્વાગત હવે.
2: સભી દીદીઓ કો જય બિહાન.
1: સરજી, એ બતાવા, સાયબર ક્રાઇમ કર બાત કરે થી, તા એમન કોન તરહ કર હોથે?
2: દેખીએ દીદી, વૈસે તો સાયબર અપરાધ કઈ પ્રકાર કે હોતે હૈ, લેકિન ઓનલાઈન જબ હમ રિપોર્ટ કરતે હૈ યા શિકાયત દર્જ કરતે હૈ તો ઇસ દ્રષ્ટિ સે ઇસે તીન પ્રકાર સે સમજા જા સકતા હૈ. પહેલી શ્રેણી મેં જો ભી સાયબર અપરાધ મહિલા એવં બચ્ચો કે સાથ હોતે હૈ વો સાયબર ક્રાઇમ આતે હૈ. દૂસરા એસે મામલે જહાં પે પૈસે કા નુકસાન હુઆ હૈ યા ફિર ઓનલાઈન વિત્તીય ધોખાધડી જિસે બોલા જાતા હૈ, ઓર તીસરા અન્ય સભી પ્રકાર કે સાયબર ક્રાઇમ ઇસ શ્રેણી મેં રખે જાતે હૈ. ચૂંકિ ઓનલાઈન જગત મેં મહિલાએં એવં બચ્ચો કો કાફી સંવેદનશીલ માના ગયા હૈ, ઇસીલિયે ઇનસે સંબંધિત જિતની ભી શિકાયત હૈ ઇસે વિશેષ કેટેગરી મેં રખા ગયા હૈ. ઇસમેં મહિલા એવં બચ્ચે સંબંધિત કોઈ અશ્લીલ સામગ્રી કા પ્રસારણ યા ઓનલાઈન ઉત્પીડન સંબંધિત મામલે દર્જ કિયે જાતે હૈ. इसी तरीके से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ऐसे मामले आते हैं जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन ठगी के उपरांत पैसे का नुकसान हुआ हो.
0: अच्छा,
2: इसके अलावा बाकी अन्य जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम हैं, जैसे हैकिंग है या सोशल मीडिया संबंधित साइबर क्राइम है, इसे अन्य साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया है. ये तीनों प्रकार के साइबर अपराध की शिकायत आप साइबर क्राइम पोर्टल यानी CYBERCRIME cybercrime.gov.in यहाँ पे पोर्टल में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
0: सर जी, जैसे रोरे बताएं वित्तीय अपराध, तो वर्तमान में कौन तरह के वित्तीय अपराध होवत हवे?
2: दीदी देखिए, ऐसे तो ये जो वित्तीय अपराध है इसके तरीके लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस प्रकार के वित्तीय अपराध चल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी साझा करें.
0: जरूर.
2: इसमें किसी व्यक्ति के जान पहचान या रिश्तेदार बनकर या सरकारी किसी योजना का लाभ देने के नाम पे किसी व्यक्ति को कोई APK फाइल, OTP या लिंक भेज करके भी ठगी की जा रही है. इसके अलावा किसी व्यक्ति को निवेश में ज़्यादा पैसे का लालच देकर या ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन नौकरी या शॉपिंग के नाम पर भी ठगी काफी की जा रही है.
0: जी सर जी, आजकल वित्तीय धोखाधड़ी का मामला बहुत बढ़ गया है, तक का हमला ऑनलाइन बैंकिंग, UPI या फोन पे जैसे डिजिटल माध्यम बनकर उपयोग ला बंद कर देना चाहिए?
2: ये सही है कि ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें डर कर ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग नहीं करना चाहिए. अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अज्ञानता, लालच, डर और लापरवाही ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं. ऑनलाइन जगत में यदि कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम कभी भी किसी प्रकार के ऑनलाइन ठगी के शिकार नहीं होंगे और डिजिटल बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं.
0: अच्छा.
2: जैसे OTP पिन कभी शेयर ना करें, किसी भी अनावश्यक लिंक पर क्लिक नहीं करें.
0: अच्छा.
2: फोन पर कोई भी अनजान ऐप इंस्टॉल ना करें. फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करें. याद रखें कि ऑनलाइन दुनिया में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है, अतः इस प्रकार के किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए. इसी तरह फोन के माध्यम से यदि कोई आपको अनावश्यक डराकर या धमका कर पैसा मांगता है,
0: हाँ,
2: तो ऐसे व्यक्तियों के बातों में बिल्कुल ना आए. अपना मोबाइल हमेशा अपडेट रखें और शासन द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें. इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई साइबर अपराध के शिकार नहीं बने.
0: महिला मन से संबंधित जो अपराध हवे ओकर से बचे बर का कर सकत ही?
2: देखिए दीदी, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उनसे आजकल देखा गया है कि शासकीय योजनाओं का लाभ देकर ठगी की जा रही है. शासन के विभिन्न योजना जैसे जननी सुरक्षा योजना,
0: हाँ,
2: महतारी वंदन योजना, सिलाई मशीन योजना या शिशु के जन्म में सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, उसका लाभ देने के नाम पर भी ठगी की जा रही है. ऑनलाइन जगत में अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना व निजी जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है, अतः मैं सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना निजी कोई भी जानकारी, फोटो या वीडियो ऑनलाइन जगत में साझा करने से बचे.
0: सर जी, कहूँ काकरो संग वित्तीय धोखाधड़ी हो जात हवे तो उला कौन कस उपाय करना चाहिए?
2: दीदी, सबसे जरूरी बात है यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी

0: दीदी के साथ कोई भी धोखाधड़ी या साइबर अपराध हुआ है तो तुरंत एक नंबर है 1930। सभी दीदियों से अनुरोध है कि ये नंबर ला नोट कर लें, 1930। ये सरकार द्वारा चलाया गया एक हेल्पलाइन नंबर है, इसमें डायल करके अपना शिकायत दर्ज करें।
1: अच्छा।
0: या तो फिर इसके अलावा दूसरा विकल्प है, नजदीकी साइबर पुलिस थाना चले जाएं, या फिर साइबर क्राइम पोर्टल में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं दीदी कि ठगी के बाद अगर तुम्हारे साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी के केस हुई से तो ठगी के बाद यदि तुरंत बिना समय गवाए अगर अपन रिपोर्ट लाते हैं दर्ज करवे तो पैसा मिले की संभावना प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए बिना समय गवाए अपना रिपोर्ट, अपनी शिकायत 1930 नजदीकी थाना या साइबर क्राइम पोर्टल में दर्ज कराएं। यदि आपको कोई भी आपका निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो ऐसी शिकायतों को खास तौर पे साइबर क्राइम पोर्टल में महिला एवं बच्चे संबंधित शिकायत की का सेक्शन है, वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करें। शिकायत दर्ज करने के लिए दो विकल्प है, आप नामजद अपना नाम दे करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या नाम बताए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों पे जब पुलिस कार्रवाई करती है तो महिला की गोपनीयता एवं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है।
2: सर जी रोरे बहुत सुघर जानकारी देहन। अब हमन अपन मोबाइल कर माध्यम ले 1930 पर चाहे साइबर क्राइम पोर्टल पर अपन शिकायत दर्ज कर सकत ही।
3: वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, लिंक कर माध्यम ले ठगी, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध मन से बचे बर डिजिटल जानकारी, सावधानी और कानून कर संबंध में विस्तार से जानकारी देहे बर राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनेहा दीदी हो, सतर्कता और सही जानकारी ले साइबर अपराध ले बचल जा सकत है। सजग रही, सुरक्षित रही।

0: आजकल समय में समूह कर जब महिला मन आजीविका संवर्धन भर आने आने तरह कर गतिविधि मल्ला संचालित करके लखपति बने कर दिशा में हालू हालू आगू बढ़ता है। ऐसन में दीदी मन तरफ ले वित्तीय सहायता और लेन देन अधिकतर ऑनलाइन माध्यम ले करल जाता है।
1: सही कहे चंदा, आज डिजिटल जमाना में मोबाइल और इंटरनेट ले बैंकिंग पैसा कर लेन देन और सरकारी योजना मन कर फायदा आसानी ले भेटा जाते। अब गवई गांव मन में घलो माई लॉगिन मन और स्व सहायता समूह कर सदस्य मन मोबाइल कर माध्यम ले बैंकिंग सेवा कर उपयोग करत हवे।
0: ऐसे में डिजिटल रूप से सशक्त और सुरक्षित रहे बर जागरूकता कर संगे संगे साइबर सुरक्षा घलो जरूरी हो जाए। तो आई हमार जागरूक बीसी सखी दीदी श्रीमती गुलची सिदार जय माँ अम्बे स्व सहायता समूह ग्राम अमलडीहा जिला शक्ति से मिलत ही।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी। मैं 2019 में समूह से जुड़े ओकर बाद मोला बीसी सखी के रूप में चयन किया गिस। मोला बैंकिंग समावेशी के ट्रेनिंग दिया गिस जिन में मैं एक सप्ताह आरसीटी में ट्रेनिंग लेके IIBF के एग्जाम फाइट करें और उसमें उत्तीर्ण रहे। आज वही सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं भारतीय स्टेट बैंक के कियोस्क शाखा ले हूँ और साथ में मोर CSE सेंटर भी है जिन में मैं ई डिस्ट्रिक्ट भी चलाता हूँ और IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग ऑनलाइन के सारा काम मैं कर लेता हूँ।
4: तो दीदी जैसे बैंकिंग के जिन फ्रॉड होते ओखर ले बचे बर आप मन हमर दीदी मनला कैसे सिखाते हो?
3: के लिए बैंकिंग साक्षरता अभियान चलाया जाता है जिसमें हम लोग कैंप लगाते हैं गांव में और दीदियों को बताते हैं अनजान व्यक्ति कोई OTP मांगता है तो बिल्कुल भी मत बताइए। यदि आप OTP बता भी देते हैं तो तुरंत तो आप अपने लिंक शाखा में जाइए, अपने खाते का जो लेन देन है वो तुरंत निष्क्रिय कर दीजिए।
4: अच्छा।
3: और जैसे मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो उसका पिन कोड चेंज कर लीजिए या तो बैंकिंग ऐप से है उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। कई लोगों को कॉल आता है कि आपको लोन दिया जाएगा जिसके लिए आपको 1500-1000 रुपया आपको हमें देना।

0: पड़ेगा करके, जो बैंक RBI के पास पंजीकृत है आप उन्हीं से लीजिए।
1: दीदी करकोट में हमर दीदी मन हमन ले प्रश्न करत है, टोल फ्री नंबर में फोन करके ये प्रश्न हवे पलारी कलाकार पुष्पा साहू जी कर। ये पूछिन हवे कि महतारी वंदन कर पैसा आयल, ओकर पर OTP आयल, कभी कभी फ्रॉड OTP भी आयल, कभी AP के फाइल भी आयल, सही गलत कर पहचान कैसे करी?
0: महतारी वंदन का जो पैसा है उसके लिए कोई OTP नहीं आता किसी भी प्रकार से।
2: अच्छा।
0: महतारी वंदन का पैसा सीधा आपके खाते में डाल दिया जाता है, और यदि किसी प्रकार का मैसेज आए तो आपके बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में 1,000 रुपए जमा कर दिया है करके। और जैसे AP के आप टच कर लेते हैं तो उसके लिए ये है कि आप तुरंत अपने साइबर सेल को शिकायत करें, 1930 पर कॉल करके बताएं, और 1 घंटा के लिए तो फिलहाल मोबाइल बंद ही कर दीजिए। और पब्लिक प्लेस में जो वाईफाई होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कैफे में हो गया, उसका वाईफाई कनेक्ट करके आप कभी भी बैंकिंग लेन देन ना करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनत है चंदा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कर माध्यम ले स्व सहायता समूह कर दीदी मन आर्थिक रूप ले सशक्त बनल दीदी मन डिजिटल रूप ले भी जागरूक हवे।
3: हो स्व सहायता समूह कर दीदी मन के स्वरोजगार लाभ बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और आने आने डिजिटल प्लेटफॉर्म कर उपयोग ले नया आयाम मिली हवे। ऐसन में ओमन कैसे साइबर सुरक्षा कर प्रति जागरूक होके आगे बढ़ता है आई जानत ही। रउरे ही ग्राम कंडोरा धनी टोला जिला जशपुर से श्रीमती सुमन एक्का।
1: जय बिहान दीदी।
4: जय बिहान दीदी। मैं सक्रिय महिला का काम 2019 से करती थी। बिहान से जुड़कर FLCRP का प्रशिक्षण लेकर ग्राम संगठन मीटिंग होते हैं, मैं उसमें जाती हूँ और दीदियों को बैठा कर मैं वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूँ। कैंप लगाते हैं, मैं लोगों को बताती हूँ। मेरे से भी खुद ऐसी हो गया है, मेरे हस्बैंड से ही। उनको ये फ्रॉड को लाए थे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपके KYC अपडेट नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, OTP को आप बताना करके बोले। तो मेरे हस्बैंड को लगे कि सही में बैंक वाले हैं, फिर वो अपने डिटेल रूप से बताना स्टार्ट कर दिए। फिर OTP आया, उन लोग वो दो बार बता दिए OTP को, फिर उनका पैसा 9,700 रुपया ले गए। साइबर क्राइम के बारे में मेरी दीदी का ही उदाहरण दे दे कि मैं अपने गांव में जब जाती हूं तो उनको बताती हूं। मेरे परिवार में ही ऐसे कॉल आ गया था, मेरे दीदी के बेटे को गिरफ्तार कर लिए हैं ऐसा करके, तो मैं उस समय भी मैं सामने ही खड़ी थी, तो मेरे को जानकारी था, मैं इसके बारे में बार बार ट्रेनिंग ले चुकी थी। तो मैं अपनी दीदी को मैं मना करी कि ये फ्रॉड ये साइबर क्राइम वाले हैं, आप इनसे बचिए, यही जागरूक करती हूँ।
5: दीदी जागरूकता अभियान के बारे में बताया, एक खातिर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
3: संगी हो राउर मन रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर एक महीना कर दूसर गुरुवार के दोपहरिया 2 बजे से, और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम कर प्रसारण दोपहरिया 2:30 पर सुन पाप। एक कार्यक्रम में योजना ले संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1-800-233-2398 में दोपहरिया 12 बजे से 3 बजे तक फोन करके पूछल जा सकत हवे।
1: तब सुरता रखी दीदी हो, OTP और पासवर्ड कोनोला नहीं बताना है।
3: कोनो भी कॉल या मैसेज पर तुरंत विश्वास जेन करी, पहले ओकर जानकारी लई, ओकर पहचान करी, व्हाट्सएप चाहे दूसर माध्यम ले आल कोनो भी एप ला इंस्टॉल जेन करी, रोज अपन लेन देन कर जांच करी, और कोनो भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरतेज कार्रवाई करी।
1: जागरूकता और सुरक्षा कर संगे तरक्की कर ए यात्रा बढ़त रहे, यही कामना कर संगे बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी बनकर सफलता की नवा कहानी लेके फिर भेटा। तब तक बर दे विदा।
3: जय जोहार, जय बिहान।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट का सरगुजिया में अनुवाद। मीडियम एप और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:45 हुए हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन को। अल्फाज थे अहमद फराज के। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का आप आनंद ले रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाए और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए पंकज उदास की गाई ये गजल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम गीत गंधा का। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाई ये गजल।

श्रोताओं, आशा भोसले की गाई इस गज़ल के साथ आज गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा का समापन यहीं होता है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सभा समाप्त करने से पहले आइए हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, हमारी सांधिकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोंठ के साथ। भजन संध्या कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे 5:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण करेंगे 5:30 पर। 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली लेकर आएंगे 6:20 पर। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आप लुत्फ उठा सकेंगे 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण करेंगे शाम 7:20 पर। इसमें सामायिक चर्चा के विषय होंगे मजबूत परिवार व्यवस्था से सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और बात होगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन से स्वस्थ महिलाएं। साथ ही होगी किसानवाड़ी 7:30 पर। स्मार्ट कृषि विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पी के भगत। विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जी की देखभाल कैसे करें। कुछ सुनेंगे लोकगीत, जानेंगे मंडी भाव और मौसम की जानकारी। करेंगे आज का सवाल और मौसम आधारित कृषि परामर्श भी आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत होगा 9:15 पर। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी होगा रात्रि 10 बजे।

मीडिया में वो 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 3:03 होने को हैं। अब हमारी आज की मीडिया वेब पर ये सभा यहीं संपन्न होती है।

है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के साथ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, कंडराजा, बैरडांड, दातीढाब, घड़गांव, उरंगा, बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाका, रूमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण

0: कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरीत ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडईपानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मुहकोट बहीगांव लिखमा जोगी बिरदो मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सांधिकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं शर्मा बंधुओं के गाए और लिखे इस राम भजन के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भजन संध्या कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है आयशा भोसले की आवाज में ये पारंपरिक भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कवि नारायण अग्रवाल का लिखा ये भजन, स्वर है सुरेश वाडकर का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रैदास का लिखा यह पारंपरिक भजन।

चित्रा सिंह की गाय इस भजन के साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 और 36 सेकंड हुए हैं। लीजिए पेश है युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी।

हवा के खिलाफ चलने का हौसला रखो, उम्मीद का दिया दिल में जला कर रखो। मंजिल खुद रास्ता पूछेगी एक दिन, बस खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी, जहां बात होती है दिल की, जज्बातों की और ज़िंदगी की सच्चाई की। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो छोटा ज़रूर है लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है। दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी खुशियाँ कभी गम, लेकिन जो इंसान हर हाल में आगे बढ़ता है वो कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसके दिल में उम्मीद ज़िंदा रहती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर हमारे पास उम्मीद ना हो तो क्या सुबह उठने की हिम्मत भी कर पाएंगे? उम्मीद ही वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल में ये कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ है, कुछ अच्छा अभी बाकी है। जब एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन फिर वो उठता है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो चल सकता है। दोस्तों, उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम जो भी करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर होती है। सोचिए, हम सुबह उठते क्यों हैं? हम मेहनत क्यों करते हैं? हम सपने क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। उम्मीद हमें आगे बढ़ने की वजह देती है। जब ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा होता है तब शायद हमें इसकी अहमियत समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वैसे ही हमें एहसास होता है कि उम्मीद ही वो सहारा है जो हमें टूटने से बचाती है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी के सामने कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत होने लगता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं, और कभी कभी तो खुद पर से भी भरोसा उठ जाता है। ऐसे समय में इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर एक छोटी सी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता रहे। और यकीन मानिए, जो लोग उम्मीद का साथ नहीं छोड़ते वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद हमें हिम्मत देती है, यह हमें सिखाती है।

सकती है कि गिरना गलत नहीं है, बल्कि गिर कर उठना ही असली जीत है। जब एक खिलाड़ी बार बार हारता है तो वो खेलना क्यों नहीं छोड़ देता? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अगली बार वो जीत सकता है। इसलिए ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कभी भी अपनी उम्मीद को कमज़ोर मत पड़ने देना, क्योंकि उम्मीद से ही वो हौसला है जो आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल कर एक नई रोशनी की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है अग्निपथ से, जिसमें आवाज़ है सोनू निगम की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल क्रम महफिल की ओर, जहां हम सुनेंगे कुछ प्यारी प्यारी सी गजलें।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के क्रम महफिल में। एक प्यार का नगमा है जो दिल में गूंजता रहा, तेरी यादों का हर लम्हा मुझे छूता रहा। जिंदगी की राहों में कई मोड़ आते रहे, पर तेरा साथ हर कदम हौसला देता रहा। कभी खुशी की धूप, कभी गम की छांव मिली, तेरे नाम से ही हर दर्द सुकून बनता रहा। ये सफ़र यूं ही चलता रहे तेरी मोहब्बत के साथ, क्योंकि तू ही वो नगमा है जो हमेशा गूंजता रहा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के शायर थे भूपेंद्र, और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता थे चिनवेरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदय, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमारसाय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिल लगाना तो आसान था तेरी मुस्कान से, पर अब हर सांस में तुझे ही निभाना है। कभी हंसी के रंग, कभी दर्द की रातें, इस मोहब्बत में हर पल खुद को आजमाना है। मिल भी जाओ तो मुकम्मल नहीं होता ये सफ़र, इश्क में हर बार खुद को ही खो जाना है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तलत अज़ीज़ की गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता थे दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज यादव, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल वर्मा। तुम तो ठहरे परदेसी, दिल कहाँ बसाओगे, आज हो हमारे कल किसी और के हो जाओगे, हमने तो हर लम्हा तुम्हें अपना समझ लिया, पर तुम तो सफर

धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल वर्मा। तुम तो ठहरे परदेसी, दिल कहाँ बसाओगे, आज हो हमारे कल किसी और के हो जाओगे। हमने तो हर लम्हा तुम्हें अपना समझ लिया, पर तुम तो सफ़र के हो, कहाँ ठहर पाओगे। वादों की बारिश में भीग तो गए हम, पर सच की धूप में सब सूख ही जाओगे। हमने चाहा तुम्हें अपनी हर खुशी से ज़्यादा, और तुम हमें बस एक किस्सा बना जाओगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ राजा की आवाज़ में गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इसी के साथ ही हमारा आज का क्रम महफिल बस यहीं तक।

तो दोस्तों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये खूबसूरत सफर आपको पसंद आया होगा। इसी प्यार और अपनापन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के

0: संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है बस बनाम विवाद विषय पर विचार बिंदु। संकलन और वाचन स्वर है मृदुल गुप्ता का।
2: इस संसार में आदत और स्वभाव जितना परिवर्तनशील मनुष्य में है उतना किसी और में नहीं। समय और परिस्थितियों की भिन्नता का असर मनुष्य के व्यवहार पर सबसे ज्यादा दिखता है। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आजकल के लोगों में एक आदत बहुतायत से देखने को मिल रही है और वो है बात बात पर बहस, और बेवबात की जाए तो वहां भी हालात इसी तरह के हैं। एक ने सोशल मीडिया में अपनी वॉल पर कुछ लिखा तो दूसरे को अखर गया, तीसरा उस पर खुलेआम अपशब्द लिख देता है, चौथा तो अपनी ही मानसिकता वालों को आवाज देकर बुलाता है और फिर उसके बाद चल पड़ती है गर्मा गर्म बहस और तानेबाजी। सड़क, बस, मेले, जुलूस या किसी सामाजिक समारोह में हर जगह ये आम बात होती जा रही है। यानी हर जगह हर किसी को बहस करना और उलझना मजेदार लगने लगा है। दरअसल टीवी बहसों ने भी लोगों को झगड़ालू सा बना दिया है। आजकल चैनलों की बाढ़ इस कदर आ गई है कि कोई भी व्यक्ति इनकी भाषा और बोली से अछूता नहीं रहा है। परिणाम यह है कि अब हर किसी को औरों से तीखी बात करने में, अपने सामने वाले से नोक झोंक करने में बहुत रस आने लगा है। न जाने ये कौन सा तनाव है, उलझन है, बेचैनी है कि लोग बात बात पर बहस करने लगते हैं। एक दिन तो एक चौराहे पर एक कुरियर वाला संबंधित पति पर गया। उसने पार्सल देते हुए बस इतना ही कहा कि ओटीपी दीजिए। इस पर पार्सल लेने वाले ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी मालूम है, ज्यादा मत बोलो। और बस इसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई और अंत में कुरियर वाला पार्सल बिना दिए वापस लेकर चला गया। इसी तरह एक कस्बे की बारात में एक बाराती की पसंद का गीत न बजने पर इतनी बहस हुई कि गाली गलौज से नाराज बैंड वाले वापस चलते बने और फिर बाकी बारात खामोश होकर गई क्योंकि उस समय दूसरे बैंड वाले उपलब्ध नहीं हो पाए। फिर बहस इस बात पर खड़ी हो गई कि ये भी क्या कोई बहस वाली बात थी। देखा जाए तो बहस करना इतना बुरा नहीं है। कितनी ही बार डॉक्टर से समुचित बात करने के बाद कितने ही लोग अनावश्यक सर्जरी से खुद को बचा पाए हैं। घर परिवार में कोई प्रतिभावान बच्चा अगर बहस न करे तो अपनी इच्छानुसार करियर नहीं चुन सकता। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें तो मनमानी करने वाले दुकानदार से बराबर बहस करनी होती है, तब जाकर उचित मूल्य पर मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। मगर साथ ही ये भी सच है कि बेकार और बेमतलब की बहस या तकरार से कुछ नहीं मिलता। बहस करने वाला अपनी ऊर्जा भी खर्च करता है और बेवकूफ भी साबित होता है। बहस अगर सफाई अभियान के लिए हो, नशा मुक्ति के लिए हो, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए हो, तब बहस का कोई मतलब समझ में भी आता है। हम बेमानी बहसों में उलझने के बजाय सार्थक मुद्दों और सही समय का चुनाव कर सकते हैं जिससे बहस करने के बाद कुछ हासिल हो। मगर बेवजह की बहस में उलझना हमेशा ही नुकसानदेह साबित होता है। बहस को शुरू करना अंगारों पर चलने के बराबर है, इसलिए जुबान खोलते समय सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो मुल्ला नसरुद्दीन, अकबर के प्रिय बीरबल और तेनाली

0: राम लचीली बहस करने में माहिर थे, यानी बहस ऐसी हो कि बात विचार भी हो जाए और बिना विवाद के मसले का हल भी निकल आए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
1: बहस बनाम विवाद, इस विषय पर अभी आप विचार बिंदु सुन रहे थे। संकलन और वाचन स्वर था मृदुल गुप्ता का। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले करी मुलाकात। बताइन के बस्तर में पुराना सुरक्षा शिविर मल्ला जन सुविधा के रूप में विकसित करे जावा थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा कहीन कि छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल देश भर बर प्रेरणादायी है। और आकाशवाणी के 90 पूरा होए के मौका में आकाशवाणी रायपुर काली बिहनिया वाकाथॉन के आयोजन करही। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात करीन। ए मौका में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में होवत सकारात्मक बदलाव, जन कल्याणकारी पहलू और विकास कामला ले के गोट बात करीन। मुख्यमंत्री हा श्री साला बताइन कि बस्तर क्षेत्र में पुराना सुरक्षा शिविर मनला अब धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करे जावत है, जिहां गांव के मनखे मनला स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और आने आने शासकीय योजना ले जुड़े सुविधा एक ही जगह में उपलब्ध होवत है। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय गृह मंत्री ला बस्तर क्षेत्र में चलाए जात मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के बारे में घलो जानकारी दीन। ए मौका में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो मौजूद रहीन। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरिया दिन आज रायपुर के सेरी खेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर के दौरा करीन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित ए केंद्र मा उमन हा महिला स्व सहायता समूह डहर ले करे जात नवाचार और आजीविका गतिविधि के निरीक्षण करीन। ए दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हा विशेष रूप ले माइलोगन मंडहर ले संचालित एकीकृत बकरी पालन अजा परियोजना और अच्छा बाजार लिंकेज के तारीफ करत हुए एला देश भर बर एक अनुकरणीय मॉडल बताइन। केंद्रीय राज्य मंत्री हा छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल ला आने राज्य मन बर प्रेरणा स्रोत बतात हुए अधिकारी मन ला ए योजना के और ज्यादा विस्तार ऊपर जोर दे बर कहीन। ए बेरा मा श्री पासवान हा नवा रायपुर मा संचालित ई ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी के घलो सराहना करीन। एकर पहली केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान हा राज्यपाल रमन डे का ले लोकभवन मा सौजन्य भेंट करीन। ए बेरा मा राज्यपाल हा शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उखर स्वागत और सम्मान करीन। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हा आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा मंत्रालय ले बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करीन। हाई स्कूल के परीक्षा ए बच्छर 58.39% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 71% विद्यार्थी पास हुए है। केंद्र सरकार हा कहीन है कि पूरा देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल एलपीजी और प्राकृतिक गैस के उपलब्धता सुनिश्चित करे बर प्रभावी कदम उठाए गए है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम ऊपर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग ला संबोधित करत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा कहीन कि पूरा देश में घरेलू एलपीजी के आपूर्ति सुचारू रूप ले चलत है और कोनो ला भी डिस्ट्रीब्यूशन शिप में स्टॉक खत्म होए के कोई सूचना नहीं मिले है। चिकित्सा शिक्षा विभाग हा प्रदेश के सिकल सेल संस्थान मनला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करे बर लगभग 85 करोड़ रुपया के राशि स्वीकृत करे है। एकर तहत सिकल सेल संस्थान में उच्च स्तरीय आधुनिक लैब के निर्माण करे जाही, जेखर ले मरीज मनला तुरते ही सही जांच रिपोर्ट मिल सकी और समय में उखर इलाज शुरू हो सकी। एकर अलावा विशेषज्ञ डॉक्टर के उपलब्धता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा और जेनेटिक काउंसलिंग जैसन सेवा घलो एके छत के नीचे मिल सकी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहीन है कि ये संस्थान इलाज के संग रोकथाम और जागरूकता के दिशा में घलो मील के पत्थर साबित होही। नवजात शिशु मन के स्क्रीनिंग ले लेके वाहक दंपत्ति के काउंसलिंग तक एक केंद्र छत्तीसगढ़ में सिकल सेल

0: उन्मूलन अभियान ला नवा गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा घलो अपन सुरक्षा में लगे फॉलो अप और काफिला में शामिल गाड़ी मन के संख्या ला कम करे के निर्देश दे। उमन कहिन है कि वर्तमान वैश्विक संकट और ऊर्जा संरक्षण के आवश्यकता ला देखत हुए संसाधन के संतुलित उपयोग समय के मांग है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह काली 15 मई के आयोजित करे जाही। समारोह के अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करही, उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होही। दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थी मल्ला उपाधि दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर काली 15 मई के वाकाथॉन के आयोजन करही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर हा बताइन कि ए वाकाथॉन मा आकाशवाणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी समाचार वाचक आउटसोर्स कर्मचारी श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकाथॉन के शुरुआत बिहनिया 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन्स ले हुई। ए वाकाथॉन घड़ी चौक मोतीबाग सुभाष स्टेडियम और OCM चौक होवत वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुई। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के याद में करे जाते। राजनाथ गांव के वेटलिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव हा सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करत हुए 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते है। ज्ञानेश्वरी हा स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठा के अच्छा प्रदर्शन करीन। ए उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा ज्ञानेश्वरी ला बधाई और शुभकामना दीन। उमन कहिन कि ज्ञानेश्वरी यादव के सफलता पूरा प्रदेश के युवा विशेषकर बेटी मन बर प्रेरणादायक है। जांजगीर चांपा जिला के भवरतरा गांव में एके परिवार के 4 लोगन मन के हत्या करे के मामला आगू आए है। ए मामला मा पुलिस हा 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जानबा के मुताबिक शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलत पिता बेटा मिलके अपने परिवार के 4 लोगन मन ऊपर सोवत समय टंगियाले हमला करके उखर हत्या कर दिन। घटना के जानकारी मिलत ही पुलिस के आला अधिकारी मौका में पहुंच के जांच शुरू करीन। बताया जात है कि मुख्य आरोपी हा 15 बच्छर पहली अपन छोटे भाई के हत्या करे रहीस और 1.5 बच्छर पहली जेल ले रिहा हो रहीस। उन्हें गौरेला पेंडा मरवाही जिला के ग्राम दौंजरा के बिजरवार मा घलो जमीन के लड़ाई झगड़ा के चलत एके परिवार की 2 पक्ष मा होई विवाद मा 7 लोगन घायल हो गए है। घायल मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है। पुलिस मामला के जांच करत है। दुर्ग पुलिस साइबर ठगी के मामला मा कार्रवाई करत हुए जिला मा 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारक मन के खिलाफ FIR दर्ज करे है। ए कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल ले मिले जानबा के आधार मा करे गए है। जांच मा सुपेला उतई और पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के आने आने बैंक मन के खाता मा साइबर ठगी के रकम के लेन देन के सबूत मिले है। पुलिस आ बताइन कि ए खाता के इस्तेमाल ठगी के रकम ला छिपाए और ट्रांसफर करे मा करे गए है। रायपुर के भनपुरी स्थित केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान मा आने आने डिप्लोमा पाठ्यक्रम मा प्रवेश बर आवेदन के अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित करे गए है। सिपेट रायपुर के प्रमुख डॉक्टर आलोक साहू हा बताइन कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम मा प्रवेश बर 7 जून के देश भर मा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फिर। मुख्यमंत्री हा आज नई दिल्ली मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले करीन मुलाकात। बताइन कि बस्तर मा पुराना सुरक्षा शिविर मल्ला जन सुविधा के रूप मा विकसित करे जावत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

कमलेश पासवान हाँ कहिन कि छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल देश भर बर प्रेरणादायी है। औ आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर काली बिहनिया वाकाथान के आयोजन करही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। इसमें पहले सुनते हैं रामेश्वर लकड़ा और साथियों के स्वरों में ये सादरी रिंजा कर्मा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गुलाब से पैकरा और साथियों के स्वरों में ये छत्तीसगढ़ी गणेश वंदना गीत।

छत्तीसगढ़ी गणपति वंदना के साथ ही गोधूली कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में फिल्म हीरो का गीत सुना। गीत का था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म एक चादर मैलेसी का ये नगमा। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार। संगीत है अनु मलिक का।

कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं आशा भोसले और मनोहर उदास की आवाजों में फिल्म होटल का ये गीत। गीतकार हैं दीवर और संगीत है उषा खन्ना का।

0: आशा भोसले और गाए और मनार उदास के गाए फिल्म होटल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
6: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए। और आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों, जनकल्याणकारी पहलों और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने श्री शाह को बताया कि बस्तर क्षेत्र में पुराने सुरक्षा शिविरों को अब धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य

0: से शिक्षा, बैंकिंग और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित इस केंद्र में उन्होंने महिला स्व सहायता समूह द्वारा किए जा रहे नवाचारों और आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित एकीकृत बकरी पालन अजा परियोजना और बेहतर बाजार लिंकेज की प्रशंसा करते हुए इसे देशभर के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं के और अधिक विस्तार पर जोर देने को कहा। इस मौके पर श्री पासवान ने नवा रायपुर में संचालित ई ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी की भी सराहना की। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने राज्यपाल रमेश डेका से लोकभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कल 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के MSP में प्रति क्विंटल 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय से बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए। हाई स्कूल की परीक्षा में इस वर्ष 58.39% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी अपनी सुरक्षा में लगे फॉलोअप और काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकटों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की मांग है। इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कुछ जनप्रतिनिधियों ने आगामी कुछ समय तक बड़े वाहनों के बजाय ई रिक्शा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अनुशंसाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली और अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने डेटा आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल 15 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में 1,880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वॉकथन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वॉकथन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन से होगी। यह वॉकथन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और OCM चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजनांदगांव की वेटलिफ्टर खिलाड़ी

ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जांजगीर चांपा जिले के भवंतरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद

कोरेला पेंड्रा मारवाही जिले के ग्राम दौंजरा के बिरझरवार में भी जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के 362 संदिग्ध म्यूल खाताधारकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के खातों में साइबर ठगी की रकम के लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने में किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका भी विस्तारित है। इसके असर से कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से 3 और गुरुग्राम तथा नासिक से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोंडागांव में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय भवन का भूमि पूजन किया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित GD कांस्टेबल और GD राइफलमैन की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर के बंगोली स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने आज पेट्रोल पंप संचालकों और पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रायपुर के भनपुरी स्थित केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई है। चांपा रेलवे स्टेशन पर चौथी रेल लाइन जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक काम चलेगा। इस दौरान 63 मेल एक्सप्रेस और 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। नारायणपुर पुलिस ने माण मैत्री चौपाल कार्यक्रम के तहत तेरदुल, बिंजली, सोनपुर और कुड़मेल गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवाओं को माण मित्र के रूप में नामित किया गया। जशपुर जिले के दोकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 200 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी गांजे को कच्चे आम की क्रेट के नीचे पैकेटों में छिपाकर ले जा रहे थे। दुर्ग पुलिस ने सुने मकान में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 13 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद की गई है। और संस्कार भारती द्वारा कल से राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए और आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसके अंतर्गत 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में स्मार्ट कृषि विषय पर डॉक्टर पी के भगत से लिखे भेंटवार्ता सुनेगा। विषय है कद्दू वर्गीय सब्जी की देखभाल कैसे करें। रात 8 सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा और 9:30 पर आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। रात 10 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री आप सुनेंगे और सभा के अंत में 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष आकर्षण।

हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु का प्रसारण होगा। 6:35 पर रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे। कृषि संबंधित सामयिक सुझाव आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बात में 6:45 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम गुंजे जंगल सुनेगा सुबह 7:00। 7:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकते हैं। 8:30 पर साक्षात्कार कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनेगा सुबह 9:00। 10:00 नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने हम पेश करेंगे। 11:05 पर श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का प्रसारण किया जाएगा। 12:00 NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे। 12:30 पर एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन आप सुनेंगे 1:10 पर। इसमें क्रम होगा कथा कहनी और कुछ लोकगीत बहने सुनेंगी। 1:40 पर और रात 9:30 पर ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे 2:30 पर। शाम 5:00 आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। 5:05 पर सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण होगा। 5:30 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवावाणी में युवा साथी सुनेंगे फोन इन फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। लोक संगीत का कार्यक्रम गोधली सुनेगा शाम 6:20 पर। माधुरी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रजनीगंधा। किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें स्मार्ट कृषि के तहत श्री अन्न फसलों पर चर्चा की जाएगी। रात 8:00 इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 10:00 शास्त्रीय रागों पर आधारित तो फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे राग प्रधान। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है

सूनी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों से यार, सूनी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों से यार, बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में यह गजल, जिसे लिखा है अजीज कश्मीरी ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रजनीगंधा कार्यक्रम की अगली पेशकश है डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी यह गजल जगजीत सिंह की आवाज में। मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता वो हाथ भी न मिला।

शाम ढली तो तेरी यादों का कारवां निकला, शाम ढली तो तेरी यादों का कारवां निकला, चांद भी हैरान था ये कैसा धुआं निकला।

फरहत शहजाद की लिखी और ए हरिहरन के गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: अग्नु भैया राम राम
1: राम राम परसु भैया।
0: अग्नु भैया देखा गर्मी तो बढ़ाता है, इतने इतने बरखा पानी भी कहीं कहीं दिखत है, तो पानी कर समस्या भी रहेल और पानी गिरेल भी, मौसम कर उतार चढ़ाव से भी हमन परेशान रहन, कुल मिला के मौसम तो बदलिस भी है।
1: बदली साहब अखी बदलल मौसम हर नहीं परेशान करेल, आज देखा भाई दो दिन पहले कहाँ आंधी पानी कहाँ आ जाते ढेर तो गर्मी
0: और उमस भी हो जाए,
1: उमस वाला गर्मी है अभी परेशान करेल। और अभी तो अभी मान के चल कि एकस गर्मी है अभी सितंबर महीना तक रही, कितनों बरखा होल बाकी सितंबर महीना तक की गर्मी हर जाए।
0: अग्नु भैया एक ठो बड़ा समस्या रहेल और हमन कई बच्छर से देखत हन कि शुद्ध पेयजल अगर घर में नहीं है तो बड़ा सब कोई तनाव में भी रहते हैं और होना चाहिए, पानी पिए बर तो कम से कम बढ़िया पानी हमन के मिलना चाहिए।
1: हाँ भाई तभी तो देखा बड़ा बढ़िया योजना लागू है इस देश में जल जीवन मिशन, और इतना बढ़िया योजना है कि योजना हर जब से लागू हुई तब से को उम्मीद बढ़ी कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंची, साफ पानी पहुंची। एक समय रही कि हम सुनत रहें कि भाई ढोड़ी का पानी ले पी के बीमार हो गई, हर बीमारी के जड़ बताए कि पानी आ रहा है, तो कभी ढोड़ी कर पानी तो कहीं नाला कर पानी नदी का पानी ये मतलब पियत रहन। बाकी समय हर कितना बदल गई, हमी मनाए जो गाँव गए रहन देखी वहाँ हर घर में नल, मतलब नल का पानी हर बाल्टी में झोंकात रही तो हम परेशान हो गए कि चटिक बंद तो करा,
0: बंद करा आवाज ज्यादा आत रही। तो कहीं कहीं बहुत बढ़िया पानी निकलत है लेकिन यही में कहीं कहीं पानी नहीं है अग्नु भैया, और एकरे पर सरकार शुरू करें राउर सही कहन सुरक्षित और पर्याप्त रूप से पेयजल हमर पास पहुँचे सरकार ये चाहत है, और महिला मन ला और बच्चा मन ला पानी लाकर जो समस्या रहल कई जगह हमन फोटो देखथन कि दो दो तीन तीन दस दस किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो वो सब समस्या से हमन ला मुक्ति मिल सके, साफ पानी मिली तो बीमारी भी कम होगी। और एकर अलावा जो ये जल जीवन मिशन में जो उद्देश्य जोड़ल गई से कि पाइपलाइन भी बिछाल जाए घर तक पहुंच बनाल जाए और जल स्रोत ला भी उन्नत करे बर में प्रावधान देहल गई से, एकर अलावा जो पानी टंकी हमन नवा नवा भी देखथन गांव गांव में बनी से, और सरकार कहत है कि विभागीय आधार पर जो नल कनेक्शन भी हितग्राही ला मिल सके, पानी टंकी में पर्याप्त रूप से भरल भी रहे और कोई समस्या ना हो, और इमें ग्राम पंचायत और ग्रामीण दोनों जन कर पर्याप्त रूप से भागीदारी।
1: अगर हमने को जानकारी बताई तो 2019 में भारत सरकार लागू करी और तब से अब तक अगर हम देखब तो 19.36 करोड़ परिवार ला एक लाभ मिल चुके हैं, और नल जल कनेक्शन प्राप्त परिवार कर अगर संख्या ले देखी तो 15.82 करोड़ संख्या है, कर एक बड़ा संख्या है। और पूरा राष्ट्रीय स्तर कर अगर प्रतिशत ला देखी तो लगभग 81.7% लोग उनके घर तक पहुंच चुके हैं।
0: कहे का मतलब ये है अग्नु भैया कि 2019 में जब शुरू हो रही तो 17% सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में घर मन में नल कनेक्शन रही, और आज तो हमन देखत हन कि 80-82% ये आंकड़ा बताते हैं। तो इमें कुछ कुछ जगह हमन जो देखत हन अग्नु भैया जिससे

0: स्रोत चयन के रूप में कुछ नदी बांध और भूजल स्तर जैसे कम जहाँ पर हो जाते वहाँ पर एक चुनौती रहे विभाग ला। एकर अलावा जो टंकी बनाते हैं वो कहाँ बनना है कैसे बनना है वो जब बन जाए और जहाँ जहाँ बन चुकी से वहाँ पर हमन के पर्याप्त रूप से पानी मिलत है। पाइपलाइन विस्तार में अगर हमन के भौगोलिक रूप से अगर कोई परेशानी है तो वहाँ पर पहले वो समस्या ला निपटाना पड़ेल। कई जगह पहाड़ी क्षेत्र हैं, कई जगह पाइप नहीं पहुँच पा रहे, सड़क रहे तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत रहे।
1: एक बात भी देखिए नहीं तो जो गांव में बांध है वो बड़ा जलाशय है बढ़िया पानियों में भरी से लबालब तो ओकर भी योजना बनाल गई इसकी आसपास के 5-7 गो गांव कर पूरा ग्रुप बनाए दिन समूह बनाए दिन उस समूह में ये व्यवस्था करल गई कि वो बांध से पानी ला पानी टंकी के एगो बड़ा पानी टंकी रही फिर छोटा छोटा पानी टंकी रही और माध्यम से 5-7 गांव में एक जलाशय से पानी ले जाकर व्यवस्था करल गई
0: बनाल जाते हैं। एकर अलावा जैसे अगर फ्लोराइड है आयरन है आर्सेनिक जैसे पानी में ज़्यादा है ज़्यादा मात्रा में तो शोधन संयंत्र लगाए कर भी सरकार का प्रावधान है तो वहाँ पर सर्वे के बाद और देखे के बाद जांच करे के बाद पानी की गुणवत्ता कर जांच करते तब व्यवस्था बनाल जाते हैं।
1: ये सब के बाद भी न परसों भैया एगो समस्या दिखाता है कि जहाँ जहाँ जब सूखा है जिला ड्राई जोन कथे 5-7 गाँव वैसा है जहाँ पानी का नामो निशान नहीं वहाँ थोड़ा दिक्कत आते वही यार हम बताती ना कि 80% से अधिक काम हो चुकी से लेकिन तनी मनी जो बाँची से वह वही 10-20% है जहाँ जब पानी नहीं पहुँच पाते लेकिन ओकर पर भी सरकार फिकराई से कि कैसे व्यवस्था करल जाए कैसे पानी ले यहाँ तक पहुँचाल जाए तो लंबा पाइपलाइन करके और वो सूखा गाँव मन में पहुँचा के घर घर पानी पहुँचा कर भी योजना बनाल गई से।
0: अग्रिम भैया मैं कहते रहें कि अब देखा बेरा हो गई से हमारे प्रायोजित कार्यक्रम कर कार्यक्रम है किसान वाणी ये कार्यक्रम ला सुना थी और आज के दिन हमन एक कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम सुनथन जिला कथे किसान संध्या
1: तो चला सुना जाए।

0: किसान संध्या कार्यक्रम में राहुल मनकर बहुत बहुत स्वागत कर थी। और आज हमन एक नवा गांव में पहुंचे हन। ये गांव का नाम है लबजी है, लबजी गांव का नाम है। और बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे हमन बैठे हैं नगनु भैया के साथ में। एक ठो किराना दुकान भी है, बहुत सुघर गांव। जैसे जैसे हमन आत रहे नगनु भैया, तो जैसे जैसे भीतरी पहुँचे हैं गाँव के, बहुत सुंदर। अभी धान भी लगी से गाँव में गर्मी में, तो मतलब ये है कि पानी कर बढ़िया सुविधा हो ही तभी लगाइन है। एकर अलावा सब्जी भाजी कर भी हमन खेती देखत रहन बढ़िया। पहले गांव कर स्थिति ये रहीस कि कच्चा घर दिखत रहीस ज़्यादा, लेकिन अब इतना विकास हुई से कि हमन जहाँ बैठे हैं एक ठो बढ़िया पक्का घर है। आसपास भी सड़क भी है, कई ठो सरकारी बिल्डिंग भी है, और लोग मन बैठिन है। हमन बातचीत करब, ये गाँव में पहुँचे में तो बड़ा आराम रही सगनू भी है।
1: बड़ा आराम रही भाई, बिलासपुर चौक से हम आयन ये साढ़ बार खती घुसेन तो पूरा जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पक्का रोड नहीं। और अगल बगल देखा थी तो जितने किसान मन है तनी मनी खेती सबकर बारी में दिक्कत है। कोई मकई लगाई से, कोई भंटा लगाई से, कोई मिर्चा लगाई से, और गांव कर हरियाली देख के तो जीव भर लगता है कि यही जो रही जाते कस नहीं। तो बढ़िया समृद्ध गांव है परसु भैया।
0: बातचीत शुरू करता है नगनू भैया, और सबसे पहले तो बताए रही गांव वाला मन की एक सियान जो बैठीन है वो सबसे बड़ा किसान है यहाँ कर, तो उन्हीं से बातचीत करता है। का नाम है राउर के?
2: राम गुलेल पैकरा।
0: फिर से बतावा नाम?
2: राम गुलेल पैकरा।
0: अच्छा, तो यही तो कहत रही सब कोई की गुलेल जिला बुलावा, गुलेल जिला बुलावा, तो वही राउर के हमन जोहत रहे। बताइए अपन गाँव के बारे में, बताइए खेती बाड़ी कब से कर थी, कैसे कैसे लागत है अभी?
2: ठीक है लागत है।
0: कहाँ कहाँ लगाए हम?
2: कहीं नहीं लगाए ही, अब पानी उनी कर ऐसा है ये नहीं है हमारे जगह।
0: पानी की समस्या है गांव में?
2: नहीं, हमन लगाथन ते मन में।
0: अच्छा, वैसे का का चीज का खेती करती?
2: तो मकई कर थी, और धान कर, और सरसों गेहूँ।
0: कितना खेत हुई राउर के?
2: वही 2-2.5 एकड़ कस्तो
0: वो में सब चीज का खेती कर था। बढ़िया

0: पैदावार मिलेल, धान कर कैसे मिले रहीस?
1: बढ़िया मिले रहीस
0: और इधर गेहूं वगैरह कर नहीं खेती करे?
1: कर रहन।
0: तो का चीज की कमी लगे राहुल के, अब पहले अगर खेती और अभी की खेती में फर्क पड़ी से कि नहीं?
1: पड़ी से
0: तो कमाई होएल बढ़िया। तो बताओ, कई जन सुनते हैं खेती बाड़ी कैसे करना चाहिए, कैसे ज्यादा पैदावार मिलेल?
1: तो बोला बुन ही तबे ना और मिली।
0: कितना लड़का बच्चा है राहुल के? लड़की मन है?
1: हाँ, लड़की 3 जना है।
0: तो कहकर मतलब है कि खेती बाड़ी से परिवार कर बढ़वार होएल कि नहीं, बढ़िया कमाई होएल कि नहीं?
1: होएल ना।
0: तो ये गांव में कितना बदलाव है राहुल के, तो उम्र काफी लगत है।
1: हाँ,
0: तो कितना फर्क पड़ी से?
1: बहुत फर्क पड़ी से।
0: क्या का फर्क पड़ी से?
1: सब जात का फर्क पड़ गई से। अब चावल भी मिले, अब ईसन वास भी दे दही से, अब सभी जात का तो फर्क है।
0: और खेती बाड़ी में कितना फर्क पड़ी से?
1: सब में फर्क पड़ी से।
0: बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं अगनु भी है, लेकिन बताते हैं जो हमन देखत हन, इनका चेहरा में सुकून तो है। और पहले कर खेती कर तरीका और आज कर खेती कर तरीका बदली से?
1: बदली से।
0: और भी किसान मन बैठी है हमारे साथ।
2: हाँ परसु भैया, देखा कोनो गांव में जी है नहीं तो कोई सियान जग बती है तो काबर तो धुकुरपुर करते नहीं तो, और ऐसे में देखिए तो गाँव को सियान रहते हैं और सबले बढ़िया गोठ करते हैं, लेकिन बहरे कर आदमी कोई आई तो गोठ ला तनी लजाए बताए कस करते हैं। तो खेतिया रहा है, बढ़िया है, काम करते हैं। गांव कर मुखिया भी बैठी ना है सरपंच, उनकरे जग पहले गोठ कर ली थी कि गांव में कहाँ का बदलाव देखी ना है, कैसे कैसे यहाँ पे काम चलते हैं। तो और अपना नाम ला बताई पे।
3: मोर नाम मुन्नी लाल है, मैं सरपंच पति ग्राम रव जी का हूँ।
2: तो गांव में कहाँ का व्यवस्था है? पानी कर तो हम देखा थी कि बढ़िया व्यवस्था है, हम गोइट कर थी तो हमार आगू पाछू सब कति ये नल लगी सा है, और जिसे गुठिया एक शुरू कर थी तो परसू भी झोरझिर झोरझिर बाजे शुरू हो जाए। तो रोरी बताई कि यहाँ पे पानी कर तो बढ़िया दिखता है व्यवस्था, और कहाँ का गाँव में जरूरत महसूस करती कि खेती पर बढ़िया पानी कर का साधन है, और का लगाई नहीं है गाँव कर किसान मन?
3: देखा अभी तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा खास करके गेहूँ और बहुत झन मकाई और उड़द दाल लगाते हैं बहुत झन अभी। तो पानी तो इसे हिसाब में ठीक है, लेकिन भाई बहुत झन अपन अपन व्यवस्था नहीं करे पाई है, तो गांव तरफ से कुछ व्यवस्था बनल गई सुबह में कुछ कुछ करके कराल जाए खेती ला।
2: पानी कर का साधन है खेती पर? बरसाती पानी में ही धान गेहूँ कर खेती होएल कि अभी के समय में रवि के समय में का व्यवस्था है पानी कर?
3: देखा रवि के समय में तो अपन जो बोर करीन है वही में से ज्यादा यूज करते हैं, और बरसात के सीजन में घूमघट्टा से हम परियोजना से नहर के द्वारा सिंचाई करल जाए।
2: नहर बढ़िया है गाँव तक पहुँची से?
3: हाँ, बरसात में बढ़िया आयल पानी।
2: खेती ज्यादातर गांव में का होएल? जैसे बरसात में तो देखी तो कोई किसान नहीं बाचे, सब जन धान लगाते हैं। तो ओकर अलावे का खेती होएल?
3: देखा टमाटर ला भी लगाल जाए, भाटा लगाल जाए, रहर लगाल जाए, उड़द लगाल जाए, लगभग यानी कि सभी लगाते हैं थोड़ा थोड़ा गाँव वाला मन जीवन जीवन का जैसे व्यवस्था है खेती का वो हिसाब से।
2: अब कोई ऐसा किसान है जमा कर बढ़िया आधुनिक खेती हो ही, ड्रिप इरीगेशन लगाए के टमाटर भंटा मिर्चा लगाते हैं?
3: तो सर ओतेक ज़्यादा तो सबकर जमीन नहीं है भाई गाँव में, भाई कोई दूसरा जन कला ले मांग उंगान के कर सकते हैं वो टाइप से काम।
2: गांव में सड़क उड़क मन भी बढ़िया दिक्कत है, और का रौरा लागे कि व्यवसाय जगह थी सब बढ़िया होती, सड़क में तो ठीक है दिक्कत है, और का विकास चाहा था रोजे मन?
3: सर जगह एक तो विकास तो ही दिखाते हैं कि रोड है कुछ 2-3 जगह है और बची से, वो सब मना अगर बढ़िया हो जाए अभी सीसी रोड में तो व्यवस्था बढ़िया हो जाए। और टंकी तो देखा थे, अब पानी गांव गांव में सभी जगह लगाई नहीं है, अब पानी का व्यवस्था होती है तो भरपूर होती है पानी है।
2: केंद्र सरकार है बड़ा बढ़िया देखा जल जीवन मिशन कर व्यवस्था करी तो घरनिया नल होगी और पानी मल्ला डिक्ची में बाल्टी में कहाँ कहाँ जात रही डोहे पर, एक गो ढोड़ी कुआं रहे तो वहाँ मेला निहर लगे रहे, तब तो आखी पाखी होगी तो पानी कर तो बढ़िया व्यवस्था हुई।
3: हाँ, पानी का व्यवस्था बढ़िया है, पहले तो ढोड़िया के ला खास करके दिया था, अब तो दुनिया भर का नल उल लग गई से वो खोदा के तो ही में से यूज करते हैं।
2: और प्रधानमंत्री आवास योजना कर घर में बनाते हैं?
3: हाँ, लगभग हमारे पारा में 350 लगभग है आवास
2: सब कर बन गई,
3: तो कुछ बची से लगभग तो ढलाई तो सब करे लगभग दिखाते हैं, वही लगभग मोर ख्याल से 100% में 70% लगभग ढलाई हो चुकी से।
2: हमन जे गाँव में जाती वहाँ हम लोग बताते हैं रे अभी गर्मी के समय में उड़ेला जो गरु मन रहते हैं ओमन खेत।

0: जिले नाश करते हैं और शहर के आसपास जितना भी है ये खेती पाती है मतलब चौपट कराते हैं, तो गांव में वो समस्या रहे का?
1: हाँ है समस्या तो
0: जिला दूर करे बर कहीं पहल नहीं करती
1: तो ओला बोलल जाते गांव में कि भी अपन छेरी बछरू जो भी होल बढ़िया समेट के रखिया, दूसरे जन का खेती में मत जाए दिए। और अभी शासन के तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था हुई से जो एक ठे बोलते हैं बैटरी के माध्यम से जो झटका वाला ओला लगाए रहते हैं तो वहाँ नहीं घुसे बर करे, वहाँ जाते तो पटले करंट मारे तो वापस हो जाए।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में।
3: देखा बड़ा बढ़िया गोट करीन परसों भी है और गांव कर मुखिया के नाते बता दिए हैं कि का का कमी है, का व्यवस्था है और संतुष्ट भी है गांव कर आदमी मन। पानी कर बढ़िया व्यवस्था है, प्रधानमंत्री आवास मन भी बनता है, खेती मन भी होता है, तो लगे तो ढेरे किसान बैठी है कुछ जगह गोट करी।
4: लब जी गाँव बढ़िया गाँव है और हमन देखा तहन की अच्छा भीड़ हुई से बात करते करते में पहले तो आदमी मन नहीं जुटे रहीन, लेकिन अभी हमन देखा तहन की कई जगह दर्शक मन भी बन गए। लोग मन देखते हैं कि का चीज करते हैं रेडियो वाला मन
5: कर उरत कर और भिंडी होइस और सब्जी वगैरह ये बरबट्टी वगैरह सभी मतलब बढ़िया अपन घर में यूज करे खातिर सभी कोई अपन खाए खातिर लगावत हैं ताकि बाजार से मतलब कम खरीदना पड़े, अपन खुदे मतलब उगा करके हमन खा ले अपन घर में जीवन यापन करी। एकर चलते हमार गांव हर अब बहुत मतलब धीरे धीरे जागरूक मतलब लाइन में मतलब आ गई से सब देख देख करके नकल करा था कि हम मतलब खुद लगाइए खुद मतलब घर में मतलब बना करके साग सब्जी खाई ये सब मतलब चाहते हैं। पहले से बहुत मतलब आगे मतलब बढ़ चुकी से तो इन्हें पानी अब जहाँ तक हर जगह जगह मतलब बोरिंग भी खोदा गई से और ट्यूब बेल भी खोदा गई से तो अपन यूज करे खातिर सबे मतलब धीरे धीरे मतलब लगाना अब चालू मतलब कर रही है।
4: पूरा लब्जी गांव में सब किसानी करते हैं?
5: हाँ किसानी करते हैं और कुछ लोग मजदूर भी करते हैं भाई, किसानी कर करके जब समय खाली रहे तो मजदूर करे भी अंबिकापुर चले जाते हैं और अपन दो पैसा कमा करके ले आते हैं
4: भाई। शहर के नजदीक के गांव है,
5: नजदीक है,
4: ऊपर से फायदा भी मिले।
5: हाँ फायदा भी मिले, 8-10 किलोमीटर कितना दूरी है, अपन खेती बाड़ी करके समय निकल तो चले जाते हैं वहाँ काम करे अंबिकापुर में।
4: बढ़िया साइकिल से जात हुई, पहले पैदल भी जात हुई, अब तो गाड़ी से गाड़ी भी हुई सब घर में।
5: पहले तो पैदल चलत रहीन बाकी धीरे धीरे अब कुछ दिन में मतलब साइकिल हुई, साइकिल के कुछ बदलाव आई तब साइकिल मतलब छोड़ दिन सब बाइक के द्वारा मतलब जाते हैं
4: मोटरसाइकिल
5: से ताकि उनके बेनिफिट कुछ मिलत हुई तबे तो जाते हैं बाइक से। बदलाव बहुत मतलब हो गई से, नहीं तो हमार पूर्वजन पहले मतलब यहाँ से 8 बजे निकल जाएँ और वहाँ मतलब 9 बजे अंबिकापुर में मतलब हाजिर हो जाएँ काम करके और वहाँ से 5 बजे 6 बजे छुट्टी हो तो फिर शाम को ही 8 बजे 9 बजे घर पहुँचे। ऊपर से तो बहुत बदलाव आ गई से, अब बहुत शौकीन हो गई है, अब बाइक से जाते हैं काम करे, बाइक से काम करे जाते हैं मजे के साथ घर में मतलब आ करके अपन पेट्रोल कर भी मतलब कमा लेते हैं, सभी चीज के भी पैसा कमा करके जब कमाते हैं तबे तो पेट्रोल डीजल डाल करके मन जाता।
4: बाकी अभी चर्चा तो यही होते कि पेट्रोल डीजल कम खर्चा करना पड़ी, अब धीरे धीरे साइकिल और पैदल और गुट बना बना के एक दो तीन आदमी चले जाएं एक साथ साइकिल आइकिल में तो बढ़िया रही। खेती बाड़ी में जो अभी तकनीकी बदलाव हुई से ओकर बारे में राउर बताते हैं कि अभी रोग राई लगे तो फिर ओकर से कैसे उमन छुटकारा पाते हैं?
5: अब खेती बाड़ी में तो पहले से मतलब रोग ज़्यादा मात्रा में लगत रही तो वहाँ हमन जब धान उन बीज मतलब ले जाती तो वहाँ दुकान मन में मतलब हर चीज़ का दवा भी मतलब साथ में देते हैं और जब कुछ पौधा रोपण कर लेती तो बीच बीच में मतलब मारे खातिर हर चीज़ के जानकारी बतात रहते हैं कि ये दवा के समय ऊपर मारना है तब रोग मतलब नहीं लगी।

0: ये जो अभी आवाज आ रही थी, क्या चीज की आवाज रही?
1: ये जो आवाज आ रही अभी, ये फेरी वाला के आवाज आ रही, वो गांव गांव में घूम घूम करके, मतलब
0: यही चौंगा बजा रही।
1: हाँ, दो पैसा कमाए खातिर सुबह मतलब निकल जाते हैं।
0: नहीं, सब चीज का प्रचार प्रसार के अभी जरूरी है।
1: हाँ, तो भाई घर घर में आज बैठे बैठे हर चीज मतलब पहुँच हो थे, वो भी सोचते की घर से मतलब
0: इतना सरकारी योजना चले लेकर प्रचार प्रसार हुए गाँव में
1: हो थे।
0: और का चीज के विकास राउर चाहती? राउर के बगल में तो जनप्रतिनिधि बैठी है, सरपंच है, तो ये बतात रहे कि अभी एक दो सड़क बस बची से बाकी और चीज के काम होना है कुछ कुछ। राउर लगा लगे।
1: हाँ, तो अब एक ठो हमार झूना मंदिर के पास बहुत बड़ा मतलब बांध है, वहाँ बहुत हमार सियान मन जो पहले से आते उस समय मतलब भरपूर पानी अड़त रही, तो कुछ वहाँ मतलब भटाई मतलब हो गई से तो पानी कम मात्रा में आ रहा, तो वही के खुदाई मतलब कुछ गहरीकरण मतलब हो जाती, तो गांव कर सब लभा लभ मतलब पानी सिंचाई गेहूं आलू भंटा सब चीज लगाती तो भरपूर मात्रा में मतलब पूर जाती, ये हम चाहत रहे।
0: एकर से सिंचाई सुविधा पर्याप्त?
1: हाँ, पर्याप्त तो भरपूर लभा लभ मतलब पूरा हमारे लबजी पंचायत में पूरा 2 किलोमीटर का क्षमता ला मतलब सिंचाई पहले होत रही, तो वही हम चाहते हैं कि हो जाती तो बहुत अच्छा रही, ताकि कोई किसान के मतलब पानी के कमी मत पड़े।
0: देखा अगनू भैया, एक बड़ा काम है और सरपंच जी भी बगल में एकदम बैठी ने, वो भी प्रयास कर ही लगत है और करत हो ही, और ये काम भी हो जाती तो बड़ा बढ़िया रहतीस।
2: परसों भैया जरूर कहे ना कि कहाँ बाट का चौंगा बाजत रही, तो हम देखें कि गाँव में जितना शहर कर लगल गाँव है, अब वहाँ ले बेचे पर आते हैं तो बदलाव कर गोट करें, नहीं तो बिहाने तो गांव में पहले पेज पसिया मल खाए, उठे तो मुखार कर पेज पसिया ला। मैं देखता हूँ कि एगो शहर ब्रेड बेचे पर आएगी पाव रोटी, बोला लड़का मन खरीद के नाश्ता कराता है, तो परिवर्तन नहीं ला तो कथे नहीं कहाँ पेज पसिया ले ब्रेड तक पहुँच गए ना हम, तो ये सब चीज़ देखे पर मिले और धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हम जगह एक वाऊ सियान बैठी ना है, बढ़िया मोछा ला तो अच्छा घी लगाए है काजी नहीं लगाए है, का नाम है रो?
3: धर्मपाल रजवाड़ी।
2: धर्मपाल जी, कितना साल हुए किसे गांव में तुझे? तो राहुल कर दादी पुरखा मनाए रही नो है?
3: मोर दादू मनाए रही हां, दादी मन नहीं आई रही।
2: हां, तो कहां कर रोहिया रहा, किसे इते ये गांव में लबजी में पहुंचा?
3: हां, पर ये जोगी बांध में रहने भिट्टी पोस्ट ऑफिस पड़े बगल में, वो गांव से यहां आ गए रहे। तो मोर बड़े फुआ यहाँ आई रही, तो साथ में मुर्दा उहाई गई रही, तो यहाँ भाई राजा मुखर जमीन मिले लगी तो उस समय खेती यहाँ आए गए हन।
2: तो का खेती पाती करती, कितना रोड का खेत है?
3: मोर खेत में 5 एकड़ जमीन है।
2: का लगाती हूँ मैं?
3: धान लगाती और बरसात में धाने लगाती पूरा में, और अभी चना मसूर और बटर उटर सब लगाती, गेहूँ लगाती।
2: गेहूँ कितना पाक कमाए रहे इधर?
3: ये साल गेहूँ तो घाटे ही रहे।
2: हम देखें कि इधर गेहूँ और शुरू में तो बढ़िया दिक्कत रही, तो पाछू किसे नहीं कमाया?
3: तो अब पानी सीधे कैसे कहते हैं पाला मार दी ज्यादा, ओकर से कम गेहूँ हुई से। और ये सब चीज़ें मसूर बटूर ये सब पाला मार दी, तो बस ये साल बहुत घाटा हुई से। उन्हें
2: धान की तैयारी करत हुई अभी?
3: धान की तैयारी तो नाझो कर पाई अभी,
2: तो अभी तो ही हाईब्रिड वाला धान कर जमाना आएगी।
3: हाँ, जमाना
2: तो पुराना धान मतलब बचा है कि
3: टूट धारण पुराना धान नहीं है?
2: तो किसे हो एक उसमें पहले तो भाई ककरो घरे रांधे तो गोटा मोहल्ला हर ओकर सुगंध ला ले है।
3: हाँ।
2: नहीं कि फलना घरे की रजवार पारा में बनता है बिस्नी कर भात।
3: हाँ।
2: तो अभी उमन हर महकिल की
3: नहीं महकी अब,
2: तो किसे में कुछ कर धारा
3: तो का करिए, अब पैदावार ला देख के अब सब निकल गए नोला छोड़ छोड़ के।
2: नहीं जी, तो मान ला कि वो हाइब्रिड धान कर बीज हर एको साल नहीं आई, तो किसे हो?
3: तो कर लिए कोई उपाय करना पड़ी।
2: तो किसे उपाय करी है? पुराना धान मतलब तो कहाँ बाट भुलवाए दे हा?
3: तो कहीं कहीं रखी ना है पुराना धान, मैं भी एक पर साल तोड़ दे पुराना धान।
2: का धान लगात रहा?
3: गंगा प्रसाद धान मुर्जे रख ले रही।
2: अखिर
3: मुँह कहीं पैदावार नहीं हुआ थे, तो मैं कहीं अब यही लल लिहल जाए बोरा।
2: देखा हमन हाइब्रिड धान लगाती और 1 एकड़ में 25 क्विंटल 30 क्विंटल तक पैदा होता है अगर बढ़िया कर दें तो। और जो पारंपरिक हमन का धान रही रोरे जाना थी कि झूनी परास होगी चाहे जीरा फूल होगी उसकी बिसनी होगी, उन्होंने कम उत्पादन रहे, लेकिन खाए में ओकर गुणवत्ता कर कोई मुकाबला नहीं है। और चावल अभी देखिए तो कीमत बहुत ज़्यादा रहे, तो आदमी हर ओकस काबे नहीं सोचे कि भाई

0: हाइब्रिड धान धेरे फगरा कमाहूँ, लेकिन अगर इला कम भी कमाहूँ तो बरोबर हो जाइए ओकर।
1: तो भाई बरोबर एकर लिए ओला करते हैं कि बेचे के लिए वह हो जाते और खाए के लिए वही कोमल उमल धान और सारथी धान लगा लेते हैं वही हाइब्रिड में, अगर वह हो जाते हैं।
0: खेती में का परिवर्तन देखे ने तक साल में, कि पहले तो देखा भाई नागर ला बिहान ले उठे 4 बजे भोर ले तो जोतत रहे, और अभी तो मारे ट्रैक्टर और मशीन और का आएगी तो रौरे काम करती।
1: मैं तो नांगरेच में खेती ज्यादा करते ना, हम ट्रैक्टर में बहुत कम करती। तो भाई अब मैं परिवर्तन आई किसी भी कहल गई थी अब खेती कराई में, पहले पूरा में हम कमाए लागे जितना दाना एक आदमी अब कमाओ थी अब। हाँ
0: कै नांगर है रोज?
1: एक एक नांगर है
0: तो एक एक में 5 एकड़ में जो धारती।
1: हाँ कर लेते तो अब पहले तो ट्रैक्टर में थोड़ा करवाई ले रही और खेती करे समय।
0: हाँ वही तो मैं जानना चाहत रहे कि भाई नांगर में आजकल कौन जोतता है। नहीं तो देखा बड़ा बढ़िया रोड खेती पाती करती और बढ़िया कमा थी, और

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: परसों भैया बढ़िया गोयठ हुई इनकर जग, खेती में पूरा मन लगाए कि करते हैं, 2-3 पीढ़ी ले करते हैं, तो अभी को किसान बैठी ना गोयठ करते हैं।
7: इनकर से भी बात करत ही और बढ़िया अनुभवी किसान लगत है। बताइए राउर के नाम बताइए।
8: अमरदेव सिंह।
7: अमरदेव जी, राउर का काम करती है, खेती बाड़ी और?
8: हाँ, खेती बाड़ी मान लीजिए, कोई दूसरा काम नहीं है। दूसरा काम एक तो लड़का कर रहा है पोल्ट्री फार्म का।
7: अच्छा, पोल्ट्री फार्म है राउर के?
8: हाँ, तो वही में थोड़े देख रेख में महूरत है।
7: कितना बड़ा है, कब से खोले हैं?
8: 2-4 साल हुई हो गया है।
7: बढ़िया कमाई देते?
8: हाँ, कमाई तो दे। थोड़ा ये चूहा लोग से पर होना पड़ता है कहिएगा। बहुत तंग करते हैं रात में।
7: कैसे अंदर घुस जाते हैं?
8: हाँ, नीचे लग खोद के।
7: अच्छा।
8: हाँ,
7: ओकर व्यवस्था नहीं बनाए?
8: तो व्यवस्था तो बनाए रहते हैं, लेकिन एक जगह को कीजिएगा फिर दूसरी जगह। हाँ, तो यही ज्यादा परेशानी है चूहा के लिए।
7: अभी कितना उत्पादन मिलत है, कैसे ओला बिक्री करते हैं और कहाँ देख रेख कैसे करना पड़े?
8: तो देख रेख तो वह उसको दाना देना पड़ता है, पानी और पर्दा रहता है।
7: अभी गर्मी में दिक्कत होती है?
8: नहीं, उतना दिक्कत नहीं होता है, किनारे में है गांव का।
7: तो लोकल बिक्री हो कि ले जाते हैं लोग? मन
8: लोकल भी होता है तो ज्यादा दिन नहीं रख पाते हैं ना। उसको ज्यादा दिन रखिएगा तो थोड़ा थोड़ा में दाना का बहुत पड़ता है लोड। हाँ, तो उसको 25 से 30 दिन के अंदर उसको हटाने पड़ता है।
7: तो ये अपन काम है कि कंपनी वाला काम है?
8: नहीं, अपने काम है,
7: पूरा अपने काम।
8: हाँ।
7: है किलो के हिसाब से बिक्री होल का? हाँ, कैसे तो, मार्केट है कर?
8: तो मार्केट के हिसाब से उसमें रहता है, मोबाइल में आजकल तो सब चीज का जानकारी रहता है, भाव का भी। तो उसमें जो है
7: बाकी जो मतलब दवाई लगे, टीका लगे लो कैसे?
8: हाँ, टीका अपने से करना पड़ता है।
7: यहाँ पर डॉक्टर है? यहाँ पर
8: हाँ डॉक्टर भी है। वैसे कोई भी काम कीजिएगा तो मालूम हो जाता, अनुभव तो खुदे करना पड़ता है।
7: हाँ। तो लड़का कितना पढ़े लिखे?
8: तो बीए तक किया है, ग्रेजुएशन।
7: बीए करी?
8: हाँ।
7: तो उकर बाद अपन खुद कर व्यवसाय शुरू करें?
8: हाँ, हाँ, खुद।
7: और खेती बाड़ी में कैसे कर सकते?
8: खेती बाड़ी भी है सर, लेकिन अब खेती बाड़ी में क्या है, लेबर का बड़ा दिक्कत होता है। नहीं मिलते हैं, समय पे नहीं हो पाता है।

0: हाँ यही दिक्कत अब ये समय में हो रहा है।
1: तो ओकर का उपाय है? तो हमन कई बार सुने ना अभी, जैसे कि रोपा लगाही, अभी बनिहार भी नहीं मिले, मजदूर भी नहीं मिले, तो कैसे हुई फिर?
0: तो वही चीज का दिक्कत है, अब बड़ा खेती में दिक्कत, लेबर का प्रॉब्लम है।
1: तेकरे से मशीन कती जाते हैं लोग मन, मशीन तो कई तरह से मशीन आ गई।
0: हाँ तो यहाँ रोपाई का ही नहीं आया है, नहीं तो करीब करीब मिसाई का, कटाई का, ये सब का प्रबंध हो गया है, लेकिन खाली रोपाई वाला दिक्कत हो रहा है किसान।
1: हाँ अग्नि भैया, देखा खेती में भी समस्या तो रहे, लेकिन ओकर बारे में अब गांव में भी लोग सोचते हैं कि कैसे कैसे मशीन भी आना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और इनकर मुर्गी फार्म भी बढ़िया चलता है।
2: सब कसन काम है, हम तो शुरू में कहे नहीं कि बड़ा समृद्ध गांव है, यहाँ हरियाली भी बढ़िया है, खेती पाती भी बढ़िया होते, पानी के साधन भी बढ़िया है। हमारे जगह को युवा दिखते हैं, रव रख नाम लो बताइए।
3: मेरा नाम राजपाल रजवाड़ी है।
2: राजपाल जी, बढ़िया खिलाड़ी कस दिखते हैं, कहीं खेल कर था?
3: हाँ, फुटबॉल उटबॉल खेलती।
2: तो गाँव में मैदान है, बढ़िया
3: बढ़िया ग्राउंड है, बस उन्हें कमी दो तीन गोआ है, जैसे कि बैठक व्यवस्था नहीं है, और अब सब एक ठन लाइट साइट लगे रहे, वो भी रहे, अब एक ठो मंच भी नहीं है।
2: तो इतना बढ़िया मैदान है और युवा मन तो बहुत सक्रिय है, तो नहीं यहाँ का जनप्रतिनिधि मन जब भेंट करती है कि कस बनाए दा, छोटे मिनी स्टेडियम बनाए दा?
3: नहीं तो बोले बा, हर इस बार बोल रहे, लेकिन हम तो कह के जाते हैं, लेकिन फिर कोई ना हो भी नहीं कर,
2: नहीं तो फिर आए तो फिर तो मन हाथ गोड़ जोड़त रही थे,
3: नहीं तो वही चीज कस करते हैं, ये दायर तो करके देखा, फिर आगे देखिए ना हम कैसे लभा लभ कर देव।
2: एक दिन मतलब बुलाए कि फुटबॉल खेलवाओ तो बढ़िया जान जाए,
3: देखकर फिर बोल कि हमारे ठंड टाइम नहीं है अभी, तुम का छोटे छोटे आदमी मन का बात ला हम सुनिए, ऐसे बोल।
2: तो देखा छोटे आदमी कोई नहीं है राउर में, तो देखा मतदाता कर अधिकार रहे, मतदाता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है।
3: नहीं हाँ, तेकर से बोले तो रहते हैं, तेकर छोटे जान के ना नहीं आए ना नहीं करे काम।
2: तो गांव में फुटबॉल कर बढ़िया टीम है?
3: हाँ है।
2: तो अब कहूँ कहूँ खेले जाता कि
3: बहुत खेले ही, हमार सरपंच भी हमार हो जाते रही, अध्यक्ष रही, और मैं मोरी टीम का कप्तान रही, वो अध्यक्ष जी ओकरे मतलब परामर्श से चले हम, मतलब
2: राउर का टीम का नाम है
3: युवा क्लब लव जी रहे।
2: तो कहूँ कहूँ कहाँ खेले गए?
3: तो खेले ब तो स्टेडियम में भी गए रहे, खैर बार होगी से इलाका खैलबा मंडरा उहर दैरमा कोटिया और का बोल बहुत ज्यादा है, गुमगारा खड़गावा।
2: तो कोनो जगह जीता फाइनल मैच ला?
3: हाँ जीते रहे गुमगारा में।
2: अभी हम देखते कि गांव गांव में जैसे मैच हुए तो मेरे पहले तो ट्रॉफी वाला देते रहे, अभी तो बोकरी बोकरा वाला कैसे देते?
3: हाँ तो बोकरा पैर में नहीं फंसे रहे, कल हम बढ़िया लागे रहते, हजार 500 को वही ट्रॉफी ला दे देंगे, और एक गोद 20 रुपया दार लाकेट लटका दे,
2: ओकर ले बढ़िया बोकरे है रहा।
3: हाँ तो भाई थके धनते में तो असूल होती चटिक, तो सब जे बढ़िया लागती। हाँ
2: तो देखा खेल खिलाड़ी तो होते रहे, खेल मन भी होल, और खेल से पूरा शरीर स्वस्थ रहे, सभी जन जानते हैं। संगे खेती पाती का करती रहे?
3: देखा अब लगभग लगभग 40 साल हुआ थे, तो अभी 2-4 साल से लगभग लगभग सभी जात लगा, अभी है टमाटर, भिंडी, बरबट्टी, लौकी, करेला, मकई और उड़द, इतना चीज लगाए हो, और लगभग लगभग रोजे बाजार करत हूँ, कोई जात आत हैं तो मतलब देहत भी हो, इसने देहत हो और बाजारों में बेचत हूँ।
2: बड़ा बढ़िया देखा, दाल भात और सब्जी सभी ला कमा था, और टमाटर कमा था चटनी भर। तो बढ़िया रोरे खेती करती, इसने जो युवा में जागरूक रहते नहीं प्रस्तुत किया, तबे ये खेती पाती है बढ़िया होल, कि खेल कूद तो करते हैं, फुटबॉल कर बढ़िया खिलाड़ियाँ हैं, लेकिन खेती पाती में भी पाछू नहीं है। तो और भी हमारे जगह बैठी ना है गाँव कर सियान मन जवान मन बैठ करी।
1: हमारे कार्यक्रम का समय भी होते जाता है, तो थोड़ा बहुत समय बची से एक युवा हमारे साथ में बैठी नहीं, किसानी भी करत हो ही व्यवसाय भी करते हैं, तो राहुल के का नाम है?
4: मोर नाम राजू सिंह।
1: राजू भाई, सब झनला बुलाए बर व्यवस्था बनाए बर आज कर बातचीत बर राहुल कर बड़ा सहयोग रहीस, हमन देखें कि सबला नाम से राहुल बुलायन, सब कोई बड़ा प्रेम भाव बनाए के आए नहीं यहाँ पर बैठे।

0: है सब बड़ा बढ़िया रहीस। एक गांव के बारे में बताओ कि कैसे कैसे गांव है, का का काम होता है, कुछ समस्या, कुछ बढ़िया चीज, का का चीज।
1: तो कायल मुके पता चलीस कि रौरे मनाए वाला ही, तो हमन बड़ा खुशी होइन कि भाई हमर गांव में आ हैं, तो चौपाल लगही, तो कहीं कि जुटाई रिहा किसान मन ला। तो भाई किसान मन ला बोलें कि भाई आ हैं रेडियो में हमर बात हर सुनाही अंबिकापुर, तो सब कोई सुन ही भाई लवजी का। तो किसानों मन खुश हो गिन कि चला भाई जुटी।

0: है सब बड़ा बढ़िया रहीस। एक गांव के बारे में बताओ कि कैसे कैसे गांव है, का का काम होता है, कुछ समस्या, कुछ बढ़िया चीज, का का चीज।
1: तो कायल मुके पता चलीस कि रौरे मनाए वाला ही, तो हमन बड़ा खुशी होइन कि भाई हमर गांव में आ हैं, तो चौपाल लगही, तो कहीं कि जुटाई रिहा किसान मन ला। तो भाई किसान मन ला बोलें कि भाई आ हैं रेडियो में हमर बात हर सुनाही अंबिकापुर, तो सब कोई सुन ही भाई लवजी का। तो किसानों मन खुश हो गिन कि चला भाई जुटी। तो यही सब है, और गांव का जो सब चीज ठीक है, बस एक ही गो परेशानी आए हमन ला। अगर तुमन का माध्यम से अगर हो जाती हमन तो जनप्रतिनिधि मन ला भी बोल देखा थी।
0: बताइए।
1: हमार परेशानी एगो है कि हमारे एगो बांध है, वो बांध है अगर गहरीकरण हो जाती तो थोड़ा मोड़ा खेती जिसे ट्यूबवेल से और व्यवस्था से करत हैं अपन, लेकिन वो बांध हर गहरीकरण हो जाती तो सब कोई लबालब खेती करती ना, सब कर बढ़िया बारी मन में हरा भरा रहती, तो रउरे मन भी आते न कभो कभो तो मिल जाती खाए बर साग सब्जी।
0: एक झन और किसान एकर बारे में कहत रहे, तो एकर बारे में रोक कहाँ से लगी, से कहाँ से अटकान हो गई से।
1: ये क्या है कि हमार जो एरिकेशन एरिकेशन से बोल के अगर हो जाती इधर से हमन जैसे बोल थी कोयला भी जनप्रतिनिधि मतलब तो बोलते हैं कि वो एरिकेशन वाला है, तो एरिकेशन से हो ही, तो उनमें भी हमन आवेदन उवेदन दे देखे ही, लेकिन काम हर नहीं छोड़ता है पूरा। तो आज हमन सोचें कि तुम आ था तो ये बात ला रख कि एरिकेशन से हो जातीस तो किसान मतलब तनी सा भी फिर तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तो ऐसे भी नहीं हुआ थे जे जे व्यवस्था करके अपन ट्यूबवेल और कहीं कहीं थोड़ा बहुत व्यवस्था है ऊपर से हुआ थे। गेहूं हर हुई से बार पानी ज्यादा आए रही बरसात में, तो
0: चलो बांध के बारे में जो राउर कहे ना, वो काम हमन ला भी लगत है सुन के। एक जन और कहत रहिन, गांव वाला मन कर इच्छा है तो जरूर ये काम होना चाहिए। और एक गांव के जो युवा मन है, वो मन पढ़ाई लिखाई करते हैं बढ़िया, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं।
1: पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ 2 किलोमीटर में मेंड्रा हाई स्कूल मिडिल स्कूल सब है, और मेंड्रा के बाद फिर अंबिकापुर एजग से 10 किलोमीटर पड़ेल, तो कॉलेज का भी व्यवस्था अंबिकापुर से जाना आना हो जाए।
0: नहीं मतलब खेती बाड़ी में भी सहयोग करते हैं, अपन पढ़ाई भी करते हैं, कौन कस युवा मन।
1: हाँ मतलब ये है कि घर का काम खेती बाड़ी का समय है तो खेती बाड़ी भी कोई भी घर का जो गार्जियन बोल दे कि नहीं खेती बाड़ी करना है आज तय देख ले, तो के कॉलेज भी जाना है चाहे पढ़ाई कर भी जाना है, तो सुबेरे जल्दी उठ के अपन काम ला करेल कि रहा मुर्दाऊ का हिस्सा है तो ये मैं कर रखूँ, तो खेती बाड़ी भी हो जाए लो पढ़ाई भी हो थे।
0: खाली मोबाइल नहीं देखेल, थोड़ा
1: थोड़ा बहुत देखा
0: बहुत
1: थे भाई
0: देखेल है
1: मोबाइल, तो अब क्या है कि
0: जरूरी,
1: सिस्टम में आएगी से कि मोबाइल जेकर जानी है वो कहीं
0: परेशान हो
1: नहीं है,
0: कहीं नहीं है।
1: कहीं नहीं है यही
0: हाँ
1: नहीं है।
0: लेकिन अपना अपन काम के साथ साथ देखे के चाहिए, और जरूरी चीज भी रहल कहीं कहीं हो गए।
1: हाँ
0: आजकल लोग वही में पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब तो ऑनलाइन पढ़ाई कर भी बातचीत चलता है, देखते हैं लोग मन की स्कूल कॉलेज वगैरह चले, तो बढ़िया चीज भी रहे तो ओकर हिसाब से अब हमन ला चलना पड़ेल।
1: पहले का रहीस कि मोबाइल उबाइल नहीं रहीस तो कहीं जाए के बारे में जानकारी नहीं मिलत रहीस, अब तो क्या है कि मोबाइल के माध्यम से लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। कुछ भी अभी कुछ भी घटना घट जाता है तो मोबाइल में तुरंत पता चल जाए कि आज वो जगह एक्सीडेंट होगी।
0: घटना उटना सब पता चल जाए, जागरूक भी होते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया लगी इस राउर से बात करके, और फिर आबो कभी मौका मिली तो जरूर राउर मन से फिर से बातचीत करबो। अगनु भैया अब काम धाम भी गांव में बढ़िया शुरू हो गई से, अभी पानी कर भी आवाज़ आते हैं लोग मन, तो बढ़िया बातचीत हमन करें और लबजी कर लोग मन बढ़िया हैं, बढ़िया प्रेम भाव से हमन ला बैठाइन भी और अपन गांव के बारे में बताइन है। तो फिर मौका मिली तो फिर यहाँ पर आबो, और अभी अगला अंक में फिर कोनो दूसर गांव में चलो।
2: हाँ, और बढ़िया लागी से गांव में, और फिर नवा कोई गांव में भेंट हुई परसों भैया।
0: चलत ही और कहत ही
2: राम
0: राम
2: राम।
0: राम।

अभी किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:01 और 14 सेकंड्स हुए हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म बेटा के इस गीत से, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का, और इस गीत को सुनाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल, एक रिश्ता रेडियो सत्संग अंबही तारिका से लोड छत्रपति, संभाजीनगर औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोटके, सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी हिमाक्ष, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से विष्णु मस्कीन, ऋतिका वानी आरव, चंद्रकाला गणेश, काशीनाथ संगीता आरोहे, प्रियांशी सोनी, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। तो आइए सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म बेटा का ये गीत।

ग्राम अनुजनगर, जिला सूरजपुर से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता धिया, काव्या और मंजू राजवाड़े। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका, शिवांश, रामभरोस पैकरा, नरेश सिंह। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन। मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश और माहिर नेताम। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम नयन प्रकाश, शारदा, लकी, सीताराम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, पांडेराम, नूर साय राजवाड़े, कविता मरकाम, आरती केतका। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकाम, अरविंद सिंह और उनका परिवार। जामनगर गुजरात से सावित्री जोशी, बाबू जोशी, प्रिंस कृष्णा, आनंद और रेडिका। आपके साथ हैं हिमेश, श्वेता और तपस्या माही। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रतेश और उनका पूरा परिवार। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश।

काले, वंदना काले आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति से। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

क्रांति फिल्म का गीत आपने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं जानिसार अख्तर का लिखा गीत खयाम की बनाई धुन पर लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म शंकर हुसैन के इस गीत को सुनना चाहते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, आमगसी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर से मुनेश राम, शालिनी रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, स्वीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, चांपा छत्तीसगढ़ से दिनेश नामदेव, गीता नामदेव, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा और सीता, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास, ओम प्रकाश सिंह, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकरलाल गंगराड़े और वनीता गंगराड़े, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदी वर्मा, राहुल और गोपी वर्मा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म शंकर हुसैन में।

यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा, ईशान देवांगन, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, गुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि, ऐश्वर्या, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव, अंजनाद्री बिट्टा कोपल कर्नाटका से लक्ष्मी पवार, चैत्राली पल्लवी आदर्श, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबियानस और रेहान, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान,

सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं जानिसार अख्तर का लिखा गीत खयाम की बनाई धुन पर लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नूरी से। इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है कोटवा नारायणपुर भावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, सेक्टर 18 जगधरी यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, बिलाई छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशालाल देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, ये है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ग्राम लाहौडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता भूत, निखिल कांगड़ा, तन्वी भूत, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार, आपके साथ हैं नरगिस खातून। तो आइए सुनते हैं फिल्म नूरी का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं योगेश की रचना, एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में, किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म मेले के इस गीत को सुनना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और उनका पूरा परिवार, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश,

प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद और गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, सैमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, ग्राम टोरवाल, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी, लसुड़िया पाता, नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म मेले के इस गीत के साथ ही इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन

0: पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में और

इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन

0: The American and Chinese people.
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: The two of us united and together.
2: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism.

यसुदास को आपने फिल्म टूटे खिलौने में सुना। आइए अब सुनते हैं रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत फिल्म दुल्हन वही चुपिया मन भाई से। गायिका हैं हेमलता।

कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म श्याम तेरे कितने नाम का ये गीत, जिसे लिखा है अनजान ने और संगीत है रविंद्र जैन का।

जसपाल सिंह के गाये फिल्म श्याम तेरे कितने नाम के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं नदीम शमन की बनाई धुन पर, जिसे लिखा है सुरेंद्र साथी ने। आवाज है कुमार सानू की और फिल्म का नाम है रंग। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें मेल किया है स्टेट बैंक नगर पश्चिम बिहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, स्वीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, ग्राम चौरदाबार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका खुशबू, ज्योति ठाकुर, बेल्डी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर,

सुनीता, हार्दिक, प्राची और तन्नू करमरकर, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, बन्ने बुजुर्ग तहसील परेरा, टीकड़गंज टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, सांगली महाराष्ट्र से हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, दतरंगी से हीरामणि, पारसमढ़ी पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर और कुशल शाह।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, नागपुर से निशांत खत्री, पूनम खत्री, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से, ग्राम दरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनित कुमार और कुमारी कृष्टि, तेलंगाना भुवनगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान फरहान, समायरा अजमीन और उनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल चारडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, तिलकनगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आप सबके ईमेल फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का ये नगमा, जिसे गाया है साधना सरगम ने, गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम शमण का।

आइए अब सुनते हैं फैज अनवर का लिखा गीत मिलिंद सागर की बनाई धुन पर, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो के युगल स्वरों में फिल्म दीवाना सनम से। इस गीत को सुनाने के लिए हमें ईमेल किया है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद लखनलाल, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास शेख आजाद, ग्राम सिद्मा बाजार पारा बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद दीपिका शिवांश राम भरोस पैकरा नरेश सिंह, सैली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, बेबी जिकरा, बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसाजी खत्री, ईशा जी और जाकिर खत्री, रायगढ़ से नरेंद्र तिवारी, बेबी जो यामिनी, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: ईमेल की गूंज कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जख्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत MM किरवानी का है, और इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू, पसबा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, गुरु शब्द सिंह, अटल रेडियो श्रोता संघ सागरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू, अडार नांदगांड से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा, ताजमंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनसीर कौसर, मोहम्मद शाकिब, मोइन छोटू, शंकरलाल गंगराड़े, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनित कुमार और सोनम वर्मा, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप, राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी।

अलका याग्निक के गाए फिल्म जख्म के इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ ने। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में आइए सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्वरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागीश्री। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आज मैं हूं आपके साथ पद्मनाभ शर्मा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नीलकमल से। गीत लिखा है साहिर रिद्वानवी ने और संगीत है रवि का। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिखा है जैतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।

ग्राम पारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बनछोड़, चंद किरण प्रीति और छाया बनछोड़, कमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी धर्मेंद्र प्रजापति प्रतीक कुमार, बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग, दरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता अर्चना अरुणा अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका नामिका बलदाव यादव कुमारी रानू खुशी प्रवीण साहू और सीएल यादव, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तान्या। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। गीतकार हैं एसएच बिहारी और संगीत है ओपी नैयर का।

आइए अब सुनते हैं राजा मेहदी अली खां का लिखा गीत, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म अनपढ़ के इस गीत को सुनना चाहते हैं करही भदर बालोद से पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर, शारदा निर्मलकर, देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी सोनवानी, कुमारी लोचन विद्यार्थी और गीतिका। छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, जगदीश, गोविंदा, विशाल, पायल, अक्ष कुमार देवांगन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जाह्नवी और तृप्तेश देवांगन। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और उनका पूरा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

लता मंगेशकर को आपने फिल्म अनपढ़ में सुना। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावना आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाजों में फिल्म एक फूल दो माली से। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। फरमाइश करते हैं लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, श्री श्रृंगेरिषि महानदी सियावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर, नगर पंचायत रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन गौरव और घनश्याम साहू, मयंकर रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत और वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म सावन भादो में। गीतकार हैं फरमा मलिक और संगीत है सोनी कोमिका। इस गीत को सुनाने के लिए हमें खत लिखा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान, ग्राम परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुसारणी मसिया, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां, राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, तिवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, सुमति जया, जोगेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, जयंती, ममता, मनीषा, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्री बाई, मंजू, मानसी, मनमोहन सिंह और गिरजाबाई मरकाम, भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, अमित राठौर और धनेश तिवारी, आदर्श नगर मरोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान शर्मा।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म सावन भादो के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के 3रे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान

0: अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy.